सुप्रभात श्रोताओं, FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आज का दिन है मंगलवार, शक संवत 1948, श्रावण महीने की 13 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी के अनुसार सुबह के 5:58 हो चुके हैं। मैं हूं आपकी रेडियो सहेली चुमकी, हार्दिक स्वागत करती हूँ और आरंभ करती हूँ आज की हमारी पहली सभा।

0: FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। आज की
1: ताजा, नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने वाला विधेयक पारित हो गया है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यायिक क्षेत्र में चल रही सुधार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि पार्टी 3 विधानसभा उपचुनाव में मिले जनादेश को स्वीकार करती है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने गुजरात के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भाजपा पर विश्वास बनाए रखने का आभार व्यक्त किया। श्री नवीन ने कहा कि पार्टी बांकीपुर और दतिया में के चुनाव परिणामों का गहन विश्लेषण करेगी। भाजपा के सत्येंद्र पटेल ने वडोदरा जिले की मांजलपुर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की है, जबकि जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत कुमार ने बिहार की बांकीपुर और कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर जीत दर्ज की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव से बातचीत की। दोनों मंत्रियों ने ऊर्जा, अवसंरचना, व्यापार, रक्षा, शिक्षा और संस्कृति पर विशेष ध्यान देते हुए रणनीतिक साझेदारी की विस्तृत समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय चुनौतियों पर भी चर्चा की और भारत उज्बेकिस्तान बहुपक्षीय सहयोग के विस्तार पर विचार विमर्श किया। श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों, विशेष रूप से आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के मामलों में एक समान विचार हैं। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक कल शुरू हुई। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा बुधवार को नीति वक्तव्य जारी कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन वैश्विक अनिश्चितताओं और मुद्रास्फीति संबंधी चिंताओं के चलते आरबीआई के सतर्क रुख अपनाते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव न करने की संभावना है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुगरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए थे। जम्मू कश्मीर सरकार प्रवासी परिवारों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से लगभग 50,000 प्रवासी परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के डेटाबेस में एकीकृत कर रही है। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि सरकार प्रवासी राशन कार्ड को साधारण खाद्य पात्रता कार्ड की जगह व्यापक सामाजिक कल्याण लाभ के तौर पर परिवर्तित कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी जानते हैं आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, सबसे पहले 6:10 पर आप सुन पाएंगे भक्ति गीतों का कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुनेंगे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। सुबह 7 आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ठीक 7:05 पर आप सुन पाएंगे आज का दिन हेल्थ से जुड़ी कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 7:30 पर। 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से। शुरू की रंगोली आप सुन पाएंगे 8:40 पर। 9 आप सुनेंगे पौर आंचलिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

इसके बाद आप सुनेंगे स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले आप सुनेंगे खेलमा कार्यक्रम 9:15 पर होइलाल थियांग नेबम और उनके साथियों की आवाज में। 9:25 पर आप सुनेंगे रंगखोल कार्यक्रम एल्फर्ड ललनुंगथांग रंगखोल और उनके साथियों की आवाज में। जयंतिया कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:35 पर दैनियाल तेरेंग और उनके साथियों की आवाज में। 9:45 पर आप सुनेंगे बेते कार्यक्रम जरलेनी बेते और उनके साथियों की आवाज में।

10 बजे आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। 12 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 12:05 पर आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे 1 बजे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:05 पर आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से फिर से आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का। 2:02 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और इसके तुरंत बाद 2:15 पर दोपहर समाचार आप सुन पाएंगे। 2:30 पर आप आनंद लेंगे विविध भारती के कार्यक्रम का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हिंदी में समाचार आप सुन पाएंगे 4:00 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 4:05 पर आप फिर से आनंद लेंगे रंगारंग कार्यक्रम विविध भारती का आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। श्रोताओं, ये थी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाली कार्यक्रमों की जानकारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे भक्ति गीतों का कार्यक्रम FM 100.2 MHz पर। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग।

0: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
1: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
0: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
1: तो भुगतो।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे वुमेन सेंट्रिक फिल्म सॉन्ग। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आप सुनते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। बैठक के बाद भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग को इसके लिए माफी मांगने को कहा है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे धारा 79 के अंतर्गत दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ली जानी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें छात्रों के नीट पेपर लीक प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज एफआईआर को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत एफआईआर बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। दोनों पक्ष अपनी रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने पर भी सहमत हुए। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उज्बेकिस्तान को भारत के विस्तारित पड़ोस का महत्वपूर्ण अंग बताया। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है। ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्यसमूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों की भी भागीदारी होगी। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, सीमा पार भ्रष्टाचार से निपटने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर भी विचार विमर्श करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंध कर दिया है, क्योंकि इस तरह का लेबल लगाना कानून के खिलाफ है। प्राधिकरण ने सोशल मीडिया पर सूचित किया है कि इन उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ नई वार्ता उसके लिए समझौता करने और उस पर अमरीकी हमलों को रोकने का अंतिम अवसर है। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि होर्मोज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में अमरीका की चिंताओं को दूर करने का मार्ग प्रशस्त करने वाली वार्ता अगले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने खाड़ी सहयोगी कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर ईरान के खिलाफ नए बड़े हमले करने के आदेश को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप प्रशासन पर नए सीमा शुल्क को लेकर मुकदमा दायर किया है। राज्यों ने इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा फरवरी में रद्द किए गए आयात शुल्कों की जगह नए शुल्क लगाने का बहाना बताया है। पिछले महीने अमेरिका ने 59 देशों और यूरोपीय संघ पर दोहरे अंकों का शुल्क यह आरोप लगाते हुए लगाया था कि उन्होंने जबरन श्रम से उत्पादित आयात पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं। असम में बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राज्य के 7 जिलों में 1,28,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की चपेट में आए 7 जिलों चराईदेव, शिवसागर, धेमाजी, गोलाहाट, विश्वनाथ, जोरहाट और लखीमपुर में 380 गांव जलमग्न हैं। प्रशासन 38 राहत शिविरों का संचालन कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और बिहार में भी अगले 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रह सकता है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी अगले 3 से 4 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। कोरिया

मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो रही है। ये 9 अगस्त तक चलेगी। तन्वी शर्मा और किदांबी श्रीकांत प्रतियोगिता में भारतीय चुनौती का नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
1: नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है लक्ष्य तेनसुबम और मैं डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल के 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कृष्ण, जो कवि सांवला सागर द्वारा लिखित है। कृष्ण जन्मे थे वो मथुरा में और वृंदावन में खेले थे, महाभारत के नायक थे और अर्जुन जिनके चेले थे। बाल कृष्ण की ऐसी लीला सबको ही हर्षाती है, बड़े बड़े असुरों की कुछ भी ना चल पाती है। दिखते थे वो भोले भाले, सांवले सुंदर और निराले, मथुरा के थे केशव माधव, नंद के थे गोपाल, अर्जुन के थे वासुदेवा, कंस के थे वो काल, जिनके आगे नतमस्तक सारा ये संसार है, ये मेरे गिरधर तेरी लीला अपरंपार है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
0: श्रोताओं, अब सुनते हैं आज का दिन। श्रोताओं, आज एक बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज फिरोज मेहता का जन्म तिथि है। फिरोज शाह मेहता 4 अगस्त 1845 अंग्रेजी को मुंबई के एक प्रसिद्ध व्यवसायी परिवार में उनका जन्म हुआ था। वे भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। पारसी समाज में MA पास करने वाले फिरोज शाह मेहता पहले युवक थे। फिरोज शाह ने 4 वर्ष तक इंग्लैंड में कानून का अध्ययन किया तथा 1864 में वही से वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण कर भारत लौटे। मुंबई के कमिश्नर ऑथर का एक कानूनी मामले में बचाव करते हुए उन्होंने स्थानीय शासन के सुधार की आवश्यकता महसूस की और 1872 में नगर पालिका अधिनियम की रूपरेखा तैयार की, जिसके कारण वह बम्बई स्थानीय शासन के जनक कहलाए। 1873 में वह इसके आयुक्त नियुक्त हुए और 1864 से लेकर 1905 में अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। 1886 में बनाई विधान परिषद की संसद रहते हुए उन्होंने बहुत सारे काम किए। 1893 में गवर्नर जनरल की सर्वोच्च विधान परिषद के लिए उन्हें चुना गया। 1890 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 6वें अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1910 में इंग्लैंड की संक्षिप्त यात्रा के पश्चात वह बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। 1911 में उन्होंने उस सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में योगदान किया जो भारतीय द्वारा वित्त पोषित तथा नियंत्रित थी।

श्रोताओं, आज का दिन इसीलिए भी खास है क्योंकि आज ब्रेस्ट फीडिंग वीक का चौथा दिन है। 1 से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2026 का विषय यह है कि जीवन की सतत शुरुआत के लिए स्तनपान जो कारगर है उसे मजबूत करें।

श्रोताओं, आइए आगे बात करते हैं आज के दिन घटने वाले वो विशेष घटनाओं के बारे में, जिस घटनाओं के कारण देश और दुनिया में बहुत से प्रभाव हुए हैं। भारतीय सरकार ने 2008 में भारत जहाजरी निगम को नवरत्न का दर्जा प्रदान किया। नासा ने 2007 में मंगल ग्रह की खोज के लिए फिनिक्स मार्स नामक एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया। नासा ने 2004 में एटलिक सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया। रूस व उत्तर कोरिया में 2001 में सामरिक समझौता हुआ।

विश्व में सबसे लंबे नागार्जुन सागर बांध का निर्माण 1967 में हुआ। अमेरिका ने 1967 को नोवादा में परमाणु परीक्षण किया। मोहम्मद खातेमी 1997 में ईरान के राष्ट्रपति बने। चीन ने 1999 में अमेरिकी सेना के विमानों की नियमित उड़ानों को हांगकांग में उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। भारत का पहला परमाणु

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने 1915 में वर्सा पर कब्जा कर लिया। यूरोपीय देश बेल्जियम में 1930 को बाल मजदूर कानून बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 को महारानी की स्वीकृति मिली। जापान में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1947 में की गई। पाकिस्तानी सरकार ने 1954 में हफीज जलधारी द्वारा लिखे गए एक गीत पाक सरजमीन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाने पर सहमति दी।

श्रोतो, आइए अब बात करते हैं उन महान व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने 4 अगस्त यानी आज ही के दिन जन्म लिए हैं। मेवाड़ के शासक और महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह का जन्म 1522 सिंगराजी को हुआ था आज ही के दिन। संगीत लुईस लुली का जन्म 4 अगस्त 1664 को हुआ आज के दिन। भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मराठा वीर सदाशिवराव भाव का जन्म 4 अगस्त 1730 को हुआ। ब्रिटेन के प्रत्येक कवि पारसी बेसी शैली का जन्म 1972 में हुआ। आयरलैंड के गणितज्ञ विलियम रॉबर्ट का जन्म 1805 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय वकील और सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शाह का जन्म भी आज के दिन हुआ 1945 में। बच्चों के लिए खूबसूरत कहानियां लिखने वाले हैंस एंडरसन का जन्म 1875 में हुआ। साहित्यकार हिंदू प्रकाश पांडे का जन्म 1924 को हुआ आज ही के दिन। अभिनेता गायक निर्देशक किशोर कुमार का जन्म 1929 को हुआ आज ही के दिन। भारतीय क्रिकेटर नरेन तमहनो का जन्म 1931 को हुआ आज के दिन। अमेरिकी के प्रथम अफसर एवं 45वें राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा का जन्म भी आज ही के दिन हुआ 1961 में।

अब वो उन महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं जिन्होंने 4 अगस्त को निधन हुए। भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार एवं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्यावान काशी प्रसाद जायसवाल का निधन 1937 को हुआ। आज ही के दिन उड़ीसा की महिला मुख्यमंत्री तथा लेखिका नंदिनी सत्पथी का निधन 2006 में हुआ।

0: श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का दिन, साथ ही कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 100.2 FM पर आकाशवाणी हाफलाऊ। मैं हूँ आपकी दोस्त जुदित, स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में। हर साल 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह यानी वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। 2026 की थीम है जीवन की टिकाऊ और स्वस्थ शुरुआत के लिए स्तनपान सफल प्रयासी को और मजबूत बनाना। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे हाफलोंग के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर जॉयसी डोंगल, जो है एक पेडिट्रिशियन। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज के अतिथि का। मैम, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ये विश्व स्तनपान सप्ताह का उद्देश्य क्या है और इसके ये हर साल क्यों मनाया जाता है।
1: ब्रेस्ट फीडिंग वीक फ्रॉम 1 अगस्त टिल 7 अगस्त, ये जो हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं, दैट इज टू क्रिएट ग्लोबल अवेयरनेस। प्लस ब्रेस्ट फीडिंग को लेके हम लोग का जो एसेंशियल हेल्थ बेनिफिट्स जो होता है
0: जी
1: बच्चों के लिए और माँ के लिए, उसके लिए अवेयरनेस हम लोग स्प्रेड करते हैं। प्लस सपोर्ट सिस्टम मदर और बेबी के की तरफ, वो सपोर्ट सिस्टम हम लोग बिल्ड करने के लिए, वो हम लोग ये 1 अगस्त से 7 अगस्त ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं।
0: तो इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर जागरूकता बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, और जन्म के कितनी देर बाद ये बच्चे को पहली बार ये ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए।
1: जन्म के कितने मिनट बाद नहीं होते हैं, लाइक जितना जल्दी हो सके बच्चे बेबी को मदर का ब्रेस्ट मिल्क मिलना चाहिए। इफ़ इट इज़ नॉर्मल डिलीवरी होने से यूजुअली विद इन लाइक फ्यू मिनट्स आफ्टर बर्थ, जन्म होने के साथ साथ में बेबी को

0: ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए. और फॉर एग्जाम्पल कुछ वजह से उन लोग का सिजेरियन सेक्शन ऑपरेशन से हुआ है, तो विद इन 30 मिनट्स ऑफ लाइफ, जन्म होने के साथ साथ विद इन 30 मिनट्स, आधा घंटा के बाद बाद में ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करना चाहिए.
1: और सीजेरियन में हमें ये देखने को मिलता है कि ब्रेस्ट जो दूध होता है माँ का जल्दी आता नहीं है, तो उन उस समय हम क्या बच्चे को दूसरा दूध पिला सकते हैं या फिर?
0: नो नो, यूजुअली सिजेरियन करने के बाद में ब्रेस्ट मिल्क थोड़ा कम आता है, बट देन बेबी सकल करने से ब्रेस्ट फीडिंग आ जाता है. तो विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स ब्रेस्ट मिल्क सिक्रिएट हो जाता है. एंड दैट वो क्यों, वो कैसा होता है, बेबी सकल करने से, मदर का ब्रेस्ट सकल करने से ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड होता है. तो दूसरा कुछ भी नहीं देना चाहिए. राइट आफ्टर बर्थ बेबी शुड बी ब्रेस्ट फेड प्रॉपरली. तो देन आफ्टर दैट फर्स्ट सकलिंग ऑफ द ब्रेस्ट, देन ओनली द मदर्स ब्रेस्ट मिल्क इज सिक्रिएटेड. तो उसके वजह से दूसरा दूध या दूसरा जो है टॉप फीड, ये सब नहीं देना चाहिए.
1: आजकल हमें सुनने में आता है कि ये जो यंग जनरेशन्स की माएँ हैं, दे आर नॉट एग्रीइंग टू गिव देयर ब्रेस्ट मिल्क अपना फिगर को मेंटेन करने के लिए. ये सब हमारे दिमाग में देखने को मिलता है हमारे सिविल हॉस्पिटल में ज़्यादातर.
0: नो, यूजुअली अभी हम जो देख रहे हैं, आई फील मैक्सिमम मदर्स आर वेरी सपोर्टिव.
1: जी
0: वो लोग अपना ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहता है. लाइक लेकिन कुछ कारण का वजह से लाइक उन लोग को दिमाग में वो आ जाता है कि उन लोग का ब्रेस्ट मिल्क सफिशियंट नहीं होता है. लेकिन काउंसलिंग अच्छा से समझाने के बाद वो लोग भी मान जाते हैं. ऐसे हमने कभी नहीं देखा कि फिगर मेंटेन करने के लिए ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना
1: बड़े
0: है
1: बड़े
0: वो.
1: शहर में होता
0: हाँ
1: होगा.
0: हाँ ऐसे तो हम लोग ने नहीं देखा
1: हाँ
0: है.
1: हाँ
0: बट हाँ, कुछ प्रॉब्लम, फिजिकल प्रॉब्लम या उन लोग का मेडिकल प्रॉब्लम का वजह से कोई कोई जो होता है, कोई कोई मदर जो होता है, उन लोग को डिफिकल्टी होता है उसमें. हाँ हम लोग एडवाइस कर सकते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, लेकिन उन लोग का ऊपर में डिपेंड करता है.
1: अच्छा. और ये अगर दूध नहीं दिया, बच्चे को अगर दूध नहीं दिया तो माँ के लिए हार्मफुल हो सकता है.
0: यस ऑफ कोर्स, हाँ हार्मफुल हो सकता है. ब्रेस्ट मिल्क यदि बेबी को नहीं दिया है तो मदर का हेल्थ रिस्क ज़्यादा होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई होता है, ओवेरियन कैंसर का हाई रिस्क होता है. वो और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मदर एंड बेबी का बॉन्डिंग जो होता
1: हाँ
0: है वो
1: हाँ
0: लेस हो सकता है, कम हो
1: ओ
0: सकता है.
1: अच्छा. और जो माँ का पहला जो गाढ़ा पीला दूध है जो हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं, ये बच्चों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है?
0: कोलेस्ट्रॉम जो है वो जो इट इज द फर्स्ट मिल्क दैट इज प्रोड्यूस बाय द मदर ना. हाँ फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क जो होता है, जो थिक होता है, येलोइश कलर जो होता है, और थोड़ा जो आठा आठा जो होता है, वो कोलेस्ट्रॉम है. तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिकॉज इट कॉन्टेन्स हाई इम्यून फैक्टर. बेबीज लोग का जो इम्यूनिटी के लिए जो होता है, इम्यून फैक्टर है, और उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है जो बेबीज लोग का इम्यूनिटी के लिए जो होता है,
1: हाँ
0: और उन लोग का स्वास्थ्य के लिए जो हेल्थ
1: हाँ
0: अच्छा होने के लिए जो होता है वही देना चाहिए. वो लाइक सम मदर्स, कोई कोई मदर होता है, कोई कोई माँ होता है, लाइक कोलेस्ट्रॉम जब देखता है इट्स थिक एंड येलो कलर, कोई कोई फेंक देता है. लेकिन वो
1: हाँ
0: नहीं करना चाहिए क्योंकि वही जो येलो थिक जो है बेबी को देना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेबीज हेल्थ, उन लोग के इम्यूनिटी के लिए और उन लोग के स्वास्थ्य के लिए ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो देना चाहिए
1: जी
0: उसको.
1: जी जी और आपने बोला था कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कितने समय तक देना चाहिए और इसके बाद क्या करना चाहिए?
0: हाँ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है, इट मीन्स सिर्फ मदर्स ब्रेस्ट मिल्क को बेबी को देना चाहिए फ्रॉम बर्थ टिल 6 मंथ्स ऑफ एज. जन्म होते ही टिल 6 महीना तक बेबीज लोग को सिर्फ मदर का दूध जरूरत होता है. एक्स्ट्रा कुछ भी जरूरत नहीं होता है, पानी भी जरूरत नहीं होता है, खाने भी जरूरत नहीं होता है. तो 0 से जन्म होते ही 6 मंथ्स तक जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ माँ बेबीज लोग को जो माँ का दूध जो दिया है वही एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है टिल 6 मंथ्स, सिर्फ माँ का दूध देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग.
1: अच्छा, तो मतलब कि ये जो पहला जो दूध है, जो गढ़ा दूध है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए.
0: हाँ हाँ, दैट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट
1: जी. और ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये बच्चों के लिए कौन कौन सा हेल्थ बेनिफिट होता है?
0: सी, जो बेबी ब्रेस्ट फीड करता है, सिर्फ मदर का जो दूध पीता है जन्म से लेके 6 महीने तक, सिर्फ मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क लेता है, आप लोग देखेंगे स्पेशली लाइक उन लोग का हेल्थ अच्छा होता है, उन लोग का इम्यूनिटी बढ़ता है, और उन लोग का जो होता है देयर डेवलपमेंटल माइलस्टोन हम लोग बोलता है, जो हर महीने जैसे कि 3 मंथ्स में उन लोग का हेड होल्डिंग हम लोग बोलता है, जो गला सीधा होता है, 4 मंथ्स में वो रोल करता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन, ये सब अच्छा से होता है. हाँ, बिकॉज दे आर गेटिंग एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. जो हेल्थ बेनिफिट्स जो ब्रेस्ट मिल्क में है ना, जो जरूरत है मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स जो है, सब ब्रेस्ट मिल्क से ही मिलता है. तो उसके वजह से उन लोग का जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है अच्छा से उन लोग को अटेन होता है, मिलता है. देन नेक्स्ट हो गया, बेबी और मदर का बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है उसमें, और फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ जो होता है, दैट उन लोग का स्ट्रांग होता है, प्लस उन लोग का पढ़ाई लिखाई में भी इन द कमिंग लाइक ना एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट मिल्क मिलता है बच्चे लोग को, पढ़ाई में भी ठीक होता है. देन रिगार्डिंग द इम्यूनिटी, कोई कोई बेबीज ऐसा होता है हर महीना बीमार होता है, वो सब भी नहीं होता है, इम्यूनिटी ठीक रहता है उन लोग का. नेक्स्ट हो गया, इन फ्यूचर डायबिटीज जो होता है, कैंसर जो होता है, ब्रेस्ट मिल्क गिव प्रोटेक्शन इन द फ्यूचर ऑल्सो. तो उसका वजह से एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट.
1: जी जी जी. और ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ये बच्चों के लिए तो अच्छा ही है, बहुत अच्छा है. और ये हेल्थ बेनिफिट्स माँ के लिए भी होता है?
0: यस, ऑफ कोर्स, मदर के लिए भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल डिलीवरी के टाइम में जो ब्लीडिंग होता है, आप लोग तो मालूम है डिलीवरी के टाइम में कितना ब्लड लॉस होता है. तो ब्रेस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने से क्या होता है, वो जो ब्लीडिंग होता है, यूटरस नॉर्मल फॉर्म में जल्दी आ जाता है, ब्लीडिंग ये सब जल्दी स्टॉप होता है. देन सिजेरियन सेक्शन में भी जब सिजेरियन करता है, हीलिंग प्रोसेस इट्स फास्टर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने से. देन द नेक्स्ट फॉर द मदर इज लाइक उन लोग का जो फिगर मेंटेन होता है, लाइक ना फिगर मेंटेन होता है, एक्सेसिव जो फैट्स डिपॉजिट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम ना, वो घट जाता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने से. तो सो इट हेल्प्स इन दैट. नेक्स्ट होता है वो लैक्टेशनल एमेनोरिया, जैसे कि उन लोग को एक्स्ट्रा से ओसी पिल्स खाने का जरूरत नहीं होता है, माने ये गैप होता है ना बच्चे लोग का उसमें. देन नेक्स्ट इज दैट पहले में भी हम लोग ने बोला है, जैसे कि ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, वो सबसे भी प्रोटेक्शन मिलता है. नेक्स्ट हो गया उन लोग का, और इकोनॉमिकली भी टॉप फीड देने से, जैसे कि फॉर्मूला फीड देने से पैसा बहुत खर्चा होता है, लेकिन ब्रेस्ट मिल्क देने से नो प्रॉब्लम. एंड देन हाइजीन मेंटेन होता है, इसमें इन्फेक्शन नहीं होता है बेबीज लोग के लिए भी. तो दैट इज द हेल्थ बेनिफिट ऑफ द मदर्स ऑल्सो ना,
1: मतलब कि अपने आप में ही एक दवाई बन के पूरा काम कर रहा है बॉडी में. जी. और कई लोगों का ये मानना होता है कि जन्म के बाद शहद जो हनी होता है, पानी का बूंद, उन लोग को पिलाना चाहिए बच्चों को, ये क्या ये सही है?
0: नो नो, दैट इज अ वेरी बैड थिंग दैट इज हैपनिंग यूजुअली कल्चरली. कोई कोई इंट्रोड्यूस करता है पानी या मधु ये सब देता है, बट देन इट शुड नॉट बी गिवन. बेबीज लोग को नहीं देना चाहिए, क्योंकि बेबीज लोग को जन्म होते ही अगर ये सब देता है तो इन्फेक्शन का चांस होता है, हम लोग सेप्सिस बोलते हैं. तो मैक्सिमम हम लोग ने भी देखा है यूजुअली हम लोग का डे टू डे प्रैक्टिस में भी कि जिस जिसको पानी दिया गया है, शहद दिया गया है, उन लोग का इन्फेक्शन होता है, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए.
1: और माँ का जो दूध होता है 2-3 दिन के बाद भी थोड़ा कम, किसी का कम होता है, तो आप क्या सुझाव देंगे उन लोगों को?
0: एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क यूजुअली ऐसे अगर कुछ मेडिकल कंडीशन नहीं है तो यूजुअली ब्रेस्ट मिल्क कम नहीं होता है. एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क कैसा प्रोड्यूस होता है, बेबी माँ का जो निपल है सकल करेंगे तो उसमें हार्मोन सेक्रेट होता है टू द ब्रेन. तो ब्रेन से हार्मोन सेक्रेट होके ही ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होता है. तो एक्चुअली जिसका लाइक जो बोलते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क कमती है, आई थिंक उसमें ब्रेस्ट फीडिंग का जो टेक्निक होता है उन लोग में थोड़ा गड़बड़ होता है और प्रॉपर पोजीशनिंग अटैचमेंट जो करते हैं वो अच्छा से नहीं हुआ है. तो उसका वजह से वो लोग लाइक दे थिंक दैट ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट प्रोड्यूस सफिशिएंटली. एंड प्लस हम लोग का सोसाइटी में तो बहुत बोलने वाला बहुत ज्यादा होता है. तो इवन इफ इट इज प्रोड्यूस मच सफिशियंटली ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होने से भी कोई आके बोलता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क कमती है तो एक माँ का दिमाग में वो घुस जाता है. तो उसके वजह से उन लोग को लगता है कि ब्रेस्ट मिल्क कम है. लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए ब्रेस्ट मिल्क कमती नहीं होता है. और कैसे आप लोग को मालूम होगा, वो एक बेबी विद इन 24 आवर्स 4 to 6 टाइम्स पेशाब करने से ब्रेस्ट मिल्क सफिशियंट है वो मालूम होना चाहिए. 4 to 6 टाइम्स ना विद इन 24 आवर्स. हम लोग का नॉर्मल जो बेबीज है विद इन 24 आवर्स 7, 8, 9, 10 टाइम्स भी यूरिन पास करते हैं. तो उसमें देखना चाहिए, सिर्फ नहीं सोचना चाहिए. बेबीज को सफिशियंटली ब्रेस्ट मिल्क मिला है आपको मालूम होने के लिए बेबीज का यूरिन नंबर ऑफ यूरिन पास ना वो देखना चाहिए. तो आप लोग को मालूम हो जाएगा.
1: ठीक है, ये सबसे आसान साइन है.
0: या वेरी इजीएस्ट साइन, ताकि मदर को यू नो कॉन्फिडेंटली बोल सके दूसरे लोग को ना कि नहीं मेरा ब्रेस्ट मिल्क काफी है, सफिशिएंट है.
1: और आजकल हमें दिखाई देता है कि ये जो ब्रेस्ट पंप होता है दे यूज्ड इट, ये यूज करके बॉटल में फीडिंग होता है, ये सेफ है?
0: यूजली एक्चुअली वी डोंट रिकमेंड, हम लोग रिकमेंड बॉटल, वी नेवर रिकमेंड बॉटल फीडिंग. बॉटल फीडिंग इज द मेन कॉज ऑफ न्यूमोनिया एंड डायरिया इन न्यूबोर्न बेबीज एंड इन न्योनेटल पीरियड्स ना. तो उसका वजह से बॉटल फीडिंग जो होता है हम लोग रिकमेंड नहीं करते. यदि ब्रेस्ट पंप से पंप करके ब्रेस्ट मिल्क को निकाल के रखा है तो कप एंड स्पून फीडिंग कटोरी से स्पून से आप लोग दे सकते हैं. लेकिन वी डोंट रिकमेंड, हम लोग रिकमेंड नहीं करते ये बॉटल फीडिंग वाला, बिकॉज इसमें इन्फेक्शन होने का सबसे दैट इज द नंबर वन कॉज ऑफ न्यूमोनिया एंड डायरिया इन न्यू बॉर्न एंड इन इन्फेंट्स. तो वो बॉटल फीडिंग डिस्कार्ड करने से अच्छा है.
1: मैंने ये क्यों पूछा, क्योंकि आजकल ये जो वर्किंग लेडीज है, वर्किंग लेडीज लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है मेंटेन करने के लिए, दूध देने के लिए, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन सब के लिए.
0: यूजुअली ना बेबीज, इवन न्यूबॉर्न बेबीज आल्सो दे कैन टेक आराम से विद बाटी एंड चम्मच ना, वो लोग आराम से ले सकते हैं. तो वो मदर्स लोग पाम करके रख सकते हैं, लेकिन बाटी चम्मच में इट इज बेटर टू गिव सो दैट इट विल नॉट कॉज इन्फेक्शन ना टू द बेबी ना, इट इज बेटर फॉर द बेबी ना.
1: अगर कुछ भी होता है तो डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए कुछ लाइक.
0: यस एग्जैक्टली.
1: ये जो ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर समाज में हमारा सोसाइटी में बहुत सारा ये मिथ होता है, मिसकंसेप्शन होता है, ये कौन कौन सी आम मिसकंसेप्शन होता है?
0: Misconceptions like you know especially in Mar society and cookie society like usually we have seen hum log dekha hai ki कोई कोई मदर ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना चाहता है क्योंकि उसका पहला बच्चा प्रॉब्लम हो गया. गुजर गया क्योंकि और कोई उन लोग का लाइक यू नो रिलेटिव्स नहीं तो सोसाइटी में कोई आके बोलता है कि आपका ब्रेस्ट मिल्क अच्छा नहीं है, आपका ब्रेस्ट मिल्क तीता है, बिटर है. तो आप अगर फिर अपना दूसरा बच्चा को देंगे तो आपका बेबी भी प्रॉब्लम हो जाएगा. ये सब बहुत हम लोग को सुनाई देता है. यूजुअली ये सब नहीं होता है. बेबीज का जो जो गुजर गया है, जो कुछ प्रॉब्लम हुआ था उन लोग का, मे बी उन लोग का एस्पिरेशन हुआ था ब्रेस्ट मिल्क देने के टाइम में. सुला के जो ब्रेस्ट मिल्क देता है उसमें एस्पिरेशन होने का चांस ज्यादा होता है, उसके वजह से भी होता है. प्लस उन लोग का मेटाबॉलिक एरर होता है, कुछ कुछ चीज होता है जो जन्म के साथ साथ वो लोग लेके आते हैं, उसके वजह से होता है. तो हमारा सोसाइटी में ये सब देख के उन लोग को बोला जाता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं देना चाहिए, फॉर्मूला फीड्स या टॉप फीड देना चाहिए. लेकिन एक्चुअली ये सब ठीक नहीं है. बेबीज को, बेबी हैव द राइट फॉर द ब्रेस्ट मिल्क. तो उन लोग को अपना बेबी को अच्छी तरह से ब्रेस्ट मिल्क देना चाहिए. और दूसरा, टॉप फीड देने से ही उन लोग का इन्फेक्शन का चांस ज्यादा होता है, उन लोग का हेल्थ रिस्क ज्यादा होता है. तो इट इज समथिंग लाइक ना, ये मिसकंसेप्शन क्लियर होना चाहिए. इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क द प्रीवियस बेबी हैज डाइड. इट इज ड्यू टू सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक ना इंटीरियर प्रॉब्लम्स दैट द बेबी माइट हैव ड्यूरिंग बर्थ ना, बिकॉज ऑफ दैट.
1: ओके, तो उन सबको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं?
0: दैट्स वाई हम लोग का जो अवेयरनेस है, हम लोग का 1 अगस्त से 7 अगस्त तक ब्रेस्ट फीडिंग ना अवेयरनेस जो होता है, वो हम लोग बिकॉज ऑफ दैट दिस ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस दिस थिंग वीक हैज बीन लॉन्च ना, सो दैट एवरी चाइल्ड गेट्स द राइट टू ब्रेस्ट फीड. दैट इज द रीजन व्हाई दिस ब्रेस्ट फीडिंग वीक हैड बीन इंट्रोड्यूस ना.
1: हाँ हाँ, अगर कोई भी कुछ भी बोले उसको मानना नहीं है, डॉक्टर्स का बात मानिए और अपना खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि खुद में अपना ये जो है अपना ब्रेस्ट मिल्क है वही अपने आप में खुद का दवाई का काम करेंगे.
0: यस एग्जैक्टली, इट इज द हेल्दियस्ट and the purest form of milk newborn will ever receive.
1: और ये NHM द्वारा जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिया गया है?
0: आई एम नॉट सो श्योर रिगार्डिंग द NHM, बट देन लाइक बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो होता है NHM के द्वारा, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होता है वो लोग इंट्रोड्यूस करते हैं. NHM, ये सब NHM का जो एम्प्लॉयज़ है, दे विल बी एबल टू टेल बेटर ना.
1: और आप से हम ये जानना चाहेंगे कि कोई चैलेंजेस है आपका जब ये सब होता है, आपका सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या होता है जब बेबी जब जन्म होता है और ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में कुछ कुछ होता है?
0: Yes, हम लोग दिस इज लाइक एवरी डे वी फेस चैलेंजेस, क्योंकि न्यू बॉर्न मदर, फर्स्ट मदर जो होता है, यूजली उन लोग को ब्रेस्ट फीडिंग का तरीका जो होता है उन लोग को यूजली मालूम नहीं होता है, हम लोग को सिखाना पड़ता है. तो उन लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ता है उन लोग को. कोई कोई मदर होता है हम नहीं सकेगा, देन हमारा दूध नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट ना हम लोग को बिठा के उन लोग को लाइक यू नो सिखाना पड़ता है, लाइक और उन लोग को यू नो मॉरली उन लोग को एनकरेज
1: करना
0: है. हाँ, एनकरेज, वी बूस्ट, वी हैव टू बूस्ट देम मॉरली ऑल्सो एंड एनकरेज देम ऑल्सो फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग. तो एवरी डे वी फेस दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस, लाइक हम लोग एडवाइस देते हैं और सिखा लेते हैं, देन सम ऑफ देम आर वेरी वेरी सपोर्टिव, देन दे कैच वेरी इजिली ऑल्सो, बट लाइक फॉर फ्यू मैक्सिमम आर वेरी वेरी सपोर्टिव.
1: और बच्चे को कितने समय तक, मिनट तक हम बोलेंगे, मिनट तक उसको ब्रेस्ट फीड करना चाहिए?
0: इट डिपेंड्स ऑन द बेबी, बट मिनिमम 20 to 30 minutes बेबी को ब्रेस्ट फीड करना चाहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कंपार्टमेंट दो होते हैं, टू कंपार्टमेंट्स आर देयर. एक होता है फॉर्मिल्क, जो सामने वाला कंपार्टमेंट से आता है फॉर्मिल्क, एंड एक होता है हाइंड मिल्क, जो पीछे तरफ का जो ब्रेस्ट मिल्क सेक्रेट होता है वो होता है. तो बेबीज को दोनों चाहिए. फॉर्मिल्क जो होता है वो वाटरी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें प्रोटीन्स या फैट्स ज़्यादा नहीं होता है. लेकिन हाइंड मिल्क जो होता है उसमें फैट्स होता है, प्रोटीन्स होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होता है. तो दोनों का ज़रूरत होता है. कोई कोई मदर ऐसा होता है कि 5 मिनट 10 मिनट के बाद में साइड चेंज कर लेते हैं, दूसरा साइड का ब्रेस्ट को दे देते हैं. दैट देन क्या होता है, उसमें बेबीज लोग का वेट गेन नहीं होता है. तो बेबीज लोग को दोनों चाहिए. सिर्फ फॉर मिल्क देने से वेट गेन नहीं होगा, हाइंड मिल्क भी देना चाहिए. तो जब तक एक साइड खाली नहीं होता है
1: हाँ,
0: वो स्टॉप हाँ. नहीं करना चाहिए और चेंज नहीं करना चाहिए. तो सो इट टेक्स अराउंड 20 to 30 minutes एक साइड तक खाली होने के लिए, देन यू कैन चेंज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रेस्ट.
1: ये हम देखते हैं कि हाँ चेंज करते रहते हैं वो लोग, मतलब
0: दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू बिकॉज द मैक्सिमम ऑफ द बेबीज वो लोग वेट गेन नहीं करते बिकॉज ऑफ दैट.
1: Okay.
0: Because they are getting only the four milk,
1: हाँ, हाँ,
0: which
1: हाँ.
0: is only water and this one carbohydrates and all, ना?
1: जो अंदर का वो जो है वो उसे नहीं मिल
0: उसे
1: पाता
0: नहीं
1: है.
0: मिल पाता
1: हाँ,
0: है.
1: हाँ. और बच्चों को एक साल के बाद भी माँ का दूध पीना चाहिए?
0: Yeah, actually, आजकल कोई कोई होता है ब्रेस्ट मिल्क 1 year के बाद छोड़वा
1: हाँ
0: देता
1: हाँ
0: है,
1: हाँ
0: but usually

0: 2 years is recommended for breastfeeding.
1: Oh.
0: Till 2 years is recommended, and after 2 years, it depends on the mother how long she wants to breastfeed. Usually 4 years tak bhi breastfeeding chal sakta hai, but till 2 years should a baby should be breastfed.
1: Okay, तो अगर माँ का कुछ हेल्थ इश्यूज है तो दूध देने में उसका तकलीफ होगा, आई मीन बच्चे को हार्मफुल हो सकता है?
0: नो, देखिए मैक्सिमम ऑफ द दिस थिंग इलनेस इलमेन एंड ऑल कुछ कुछ दवा खाने से ही जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रोड्यूस होता है वो छोड़ के मैक्सिमम इलनेस में भी हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए बोलते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द मदर ओनली वेदर शी वांट्स टू ब्रेस्ट फीड द बेबी ना. अगर माँ के ऊपर में ही डिपेंड करता है कि वो बीमार है वो दे सकेंगे कि नहीं ना, तो उसके ऊपर में ही उनके ऊपर में ही डिपेंड करता है, बट यूजली वी एडवाइस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग ओनली.
1: ओके ओके, बहुत अच्छा. आज के इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए हमारे सम्मानित विशेषज्ञ का हम दिल से धन्यवाद करते हैं. मैडम, आपने ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बहुत सारा कुछ बताया हमें, माँ के बारे में या बच्चों के बारे में, उसके स्वस्थ बढ़ाने के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया हमें. तो हमें विश्वास है कि आज की ये बातचीत हमारे श्रोताओं को भी को जरूर जागरूक करेगी. श्रोताओं, स्वस्थ माँ, स्वस्थ शिशु और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार और समुदाय तक अवश्य पहुंचाएं. इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले कड़ी में एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए नमस्कार.
0: नमस्कार.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हेल्थ से जुड़ी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज सुबह नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
4: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
3: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
5: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
6: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
3: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
1: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
4: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन किया है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
5: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
6: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहाँ लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलिथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
7: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, दिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट कर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुन मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए सुनते हैं नॉर्थ ईस्ट न्यूज आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से।

नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफ लॉन्ग।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे कार्यक्रम सिरों की रंगोली। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अभी सुनते हैं पौराणिक बातोरी आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

श्रोताओ, आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से आप सुन रहे थे पुआर आंचलिक बातोड़ी। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। अब शुरू करते हैं स्थानीय भाषाओं के गीतों के कार्यक्रम। सबसे पहले सुनते हैं खेलमा कार्यक्रम के तहत खेलमा भक्ति गीत, होई लाल थियांग नैबम और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे खेलमा भक्ति गीत होइलाल थ्यांग नेबम और उनके साथियों के आवाज में। यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए आप सुनते हैं रंगखोल कार्यक्रम के तहत रंगखोल भक्ति गीत एल्फाड ललनूल थांग रंगखोल और उनके साथियों के आवाज में।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे रंखौल भक्ति गीत एल्फर्ड लनलुंगथांग रंखौल और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं जयंतिया कार्यक्रम के तहत जयंतिया भक्ति गीत डेनियल टेरंग और उनके साथियों की आवाज में।

आप आनंद ले रहे थे जयंतिया भक्ति गीत का डेनियल तेरेंग और उनके साथियों की आवाज में। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बेते कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे बेते आधुनिक गीत जरलेनी बेते और उनके साथियों की आवाज में।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही स्थानीय भाषा के गीतों के कार्यक्रम यही समाप्त होता है। FM 100.2 MHz पर यह आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अब आनंद ले विविध भारती के कार्यक्रम का।
1: ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: सेहत नामा।
1: सेहत नामा कार्यक्रम में आज आपको सुनवा रहे हैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज के इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित किया है आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष को और आज आंखों के बारे में बहुत विस्तार से हम बात करने वाले हैं और साथ में इन बातों के बीच होंगे कुछ दिलचस्प गाने। स्वागत करते हैं डॉक्टर अनूप राज्याध्यक्ष का।
3: नमस्कार।
2: नमस्ते डॉक्टर साहब, कैसा लग रहा है विविध भारती के स्टूडियो में आके, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर और रेडियो का स्टूडियो दो अलग अलग जगह।
3: बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पहले भी आपके स्टूडियोज में चर्च गेट पे गया था
2: जी।
3: काफी साल पहले, वो लाइव रिकॉर्डिंग थी, लेकिन जो आपका यहाँ का स्टूडियो है और जो आपने मुझे चीजें जहाँ पे बताई हैं, गजब है। ऐसे लगता है कि एक पुराने जमाने में हम गए हैं, गुजरे हैं। जो आपने रिकॉर्ड्स बताए हैं, जो लोग यहाँ पे आके गए हैं, जिन्होंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग किए हैं, जो आर्टिस्ट जो हमने अपने मुझे सब बताए, मैं सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ शायद कोई सौभाग्य है पिछले जन्म का जो मैं यहाँ आया हूँ। मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद, मुझे संगीत में बहुत ही रुचि है
2: जी जी।
3: तो अगर मैं ऐसी जगह पे सिर्फ आ जाऊं और देखूं तो भी काफी है। अगर आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो इससे और अच्छी शुभ चीज मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता।
2: क्या बात,
3: शुक्रिया एक बार और।
2: डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद कई बार जब आर्टिफिशियल लेंस लगाया जाता है तो लोगों के चश्मे उतर जाते हैं
3: जी,
2: ये मोतियाबिंद क्या है, कैसे होता है और किस उम्र में मिनिमम ये आजकल देखा जा रहा है?
3: तो मोतियाबिंद जो है, जो आपके आंख के अंदर, जैसे हमने पहले बात की कॉर्निया की, जो सामने की कांच की
2: जी,
3: उसके पीछे जो रहता है अपनी पुतली रहती है, जो आप काला ब्राउन ब्लू जो भी दिखते हैं उसके पीछे लेंस रहती है, हाँ, जो भिंग रहता है आंख का, जो पारदर्शक रहता है, जिसके वजह से हमको दिखाई देता है। तो आंख में देखने के लिए सिस्टम जो है वो तीन चार चीजें हैं। सामने की कांच है, उसके बाद हमारी लेंस है
2: जी,
3: उसके बाद पीछे का पर्दा है जिसको रेटिना कहते हैं, और उसके बाद ऑप्टिक नर्व है जो नस है। जब ये सब संक्रमण बराबर चलता है तो जो रोशनी रहती है वो दिमाग तक बिल्कुल सही जाती है।
2: बिल्कुल।
3: तो हमने कॉर्निया की बात कर ली, ग्लॉकोमा की भी हमने आपको बता दिया
2: जी।
3: अब ये जो है, जो लेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पारदर्शक होता है और ये ज्यादातर जिंदगी भर पारदर्शक रहता है। लेकिन जब ये सफेद होता है, जैसे अपने बाल सफेद होते हैं
2: जी,
3: सेम प्रक्रिया है। तो पहले कम उम्र में जो नए फाइबर्स आते हैं, क्योंकि बॉडी में नए सेल्स नए फाइबर्स तो नॉन स्टॉप चलते रहते हैं
2: जी, जी।
3: जब तक कि अपनी जिंदगी है, तो जो नए फाइबर्स आते हैं वो क्लियर यानी पारदर्शक की जगह ओपेक आते हैं, सफेद आते हैं या भूरे आते हैं। तो उसके वजह से लाइट जो है वो पीछे के पर्दे तक नहीं जा रहा और दिमाग को नहीं दिखाई दे रहा है
2: जी, जी।
3: एक सिंपल चीज है, आपके घर में एक खिड़की है, उसके अंदर एक आप थोड़ा हल्का मट्टी डालिए, रंग डालिए, तो क्या होगा, धीरे धीरे करके आपको दूर की चीजें दिखाई देना बंद हो जाएगी। मोतियाबिंद में ऐसे ही होता है
2: जी।
3: मोतियाबिंद कोई भी उम्र में हो सकता है, बच्चों में भी हम देखते हैं, जिसको कंजेनाइटल ग्लॉकोमा कहते हैं, जो पैदाशी होता है, बहुत कम रहता है लेकिन होता है। ओके, उसको भी ऑपरेशंस होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है जिसको डेवलपमेंटल ग्लॉकोमा बोलते हैं, कि बचपन में उसका एक कण रहता है लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25-30 साल में आ जाता है
2: जी।
3: सभी के लिए अभी ऑपरेशंस है और सभी के अच्छे उसके
2: और ये सभी जांच में पता चल जाता है,
3: जांच में पता
2: हो रहा है।
3: ज्यादातर जो होता है वो एज रिलेटेड रहता है, उम्र की वजह से होता है, जो ज्यादातर पहले जमाने में 70-80 के बाद दिखाई देता था, आजकल काफी जल्दी दिखाई दे रहा है, 40-45-50 में भी कैटरैक्स हमको दिखाई दे रहे हैं।
2: इसकी क्या वजह हो सकती है?
3: आई थिंक ये जो इलेक्ट्रॉनिक
2: अच्छा
3: जो आया है हमारे आंख के सामने, जो पहले नहीं था, ये जो आया है मेरे हिसाब से, तो और कोई कारण मैं सोच नहीं सकता। हाँ, दूसरे कारण कोई इंजरी हो तो जल्दी हो सकता है, कोई मार लग जाए किसी को
2: जी,
3: या डायबिटीज में जल्दी आता है। लेकिन अगर आप ऑलमोस्ट 90% जो है उनको ये सब चीजें नहीं रहती है, और 80% तो जो 80% हैं जो नॉर्मल, जो जिनको और कोई बीमारी नहीं है, उनमें उम्र के वजह से ही आता है। तो धीरे धीरे करके दूर की दृष्टि कम होती है, फिर नजदीक का भी कम होता है। तो उसके अंदर काफी टाइम पेशेंट को पता भी नहीं चलता, क्योंकि अपने आंख पुतली तो अपनी 2.5-3 मिलीमीटर की है, पीछे की लेंस ऑलमोस्ट 8 मिलीमीटर की है, तो मोतिया अगर साइड से शुरू हो जाए और बीच में आने शुरू हो जाए, जब तक के बीच के दृष्टि में नहीं आता पेशेंट को पता नहीं चलता, या तो काफ़ी मोतिया रहते हैं जो बीच में ही शुरू होते हैं और वहाँ से फैलते हैं, तो काफ़ी अलग अलग टाइप के हैं। चेकिंग में पता चल जाता है अगर अब पेशेंट की आँख की रोशनी ठीक हो और चश्मे से अगर उनको सुधार हो जाए, तो हम लोग कहते हैं चश्मा यूज़ करो आप, 6 महीने 1 साल में आके चेकअप करा लो, या तो क्योंकि कह नहीं सकते कि कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा
2: जी।
3: काफ़ी टाइम हमने पेशेंट देखे हैं जो 1-2 साल बाद आए हैं और उतना ही है, और काफ़ी टाइम तो 6 महीने में वापस आ जाएंगे कि अभी मुझे दिखाई नहीं देखा है मोतिया बढ़ गया है
2: जी।
3: तो इसका कारण कहना, जैसे कहने मेरे कितने बाल कब जल्दी सफ़ेद होंगे मुझे नहीं पता, तो वैसे ही होता है। और अभी तो ऑपरेशन सरल है, 10-15 मिनट के हैं, ऑपरेशन करके लेंस डाली जाती है, वो परमानेंट रहती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहता, तो किसी भी उम्र में कर सकते हैं।
2: तो ये पक्का नहीं है कि एक बार मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा?
3: पक्का है
2: जी,
3: दोबारा नहीं होगा, एक ही टाइम कर सकते हैं।
2: अच्छा,
3: एक चीज जो होती है, जो यहाँ पे हम लोग लेंस डालते हैं उसके पीछे नए सेल्स तैयार होते हैं काफी टाइम जल्दी, काफी टाइम का सालों बाद, बिकॉज अपने बॉडी में नए सेल्स आ रहे हैं, जिसको हम लोग जो लेंस बिठाते हैं उसको पोस्टीरियर कैप्सूल है, पीछे के कैप्सूल पे हम लोग लेंस बिठाते हैं।
2: अच्छा,
3: उसका ओपेसिफिकेशन होता है, उसको आफ्टर कैटरैक्ट कहते हैं, लेकिन वो मोतिया नहीं रहता, वो नए सेल्स रहते हैं लेकिन वो क्लीन नहीं रहते, तो उसकी वजह से आंख की रोशनी थोड़ी कम होती है। उसके लिए हम लोग लेजर से उसको 30 सेकंड में क्लियर कर देते हैं, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं रहती
2: जी, जी।
3: लेकिन अगर आपके किसी के आंख का मोतिया का ऑपरेशन हो जाए तो दोबारा तो जिंदगी में, या तो फिर बाबा किसी को कहीं दुर्भाग्य से कहीं दुर्घटना हो जाए और फिर वो लेंस निकालने पड़े या चेंज करने पड़े, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, दूसरी चीज हो, वरना तो
2: पूरी जिंदगी
3: 99% पेशेंट में तो पूरी जिंदगी वही लेंस चलती है किसी भी उम्र में। अभी जैसे मैंने कहा मुझे 35 साल हो गए, अभी यह हफ्ते मैंने एक पेशेंट देखी, मेरे दोस्त की मदर इन लॉ, जो आई थिंक 98 या 99 में मैंने ऑपरेशन किया था, शी इज 91 ईयर्स ऑफ एज, अब इतने साल हो गए, शी इज फाइन, दिखाई दे रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो वॉट मोर कैन यू से, अभी ऑपरेशन होके भी 30 साल हो गए बट शी इज ओके
2: जी,
3: शी इज 91 ईयर्स,
2: इतना
3: अर्सा हो गया, 91 ईयर्स हो गए उनकी उम्र है अब उनकी, और उनको अच्छा दिखाई दे रहा है, तो लेंस तो अच्छी चली रही है ना
2: जी। बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, इसमें किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए? ये जो मोतिया होता है इसको एक समय तक बढ़ने के बाद ही ऑपरेशन होता है?
3: बहुत अच्छा सवाल। पहले जमाने में हम लोग को रुकने पड़ता था।
2: अच्छा।
3: मोतिया जब तक के पूरा पकता नहीं था हम लोग उसको हाथ नहीं लगाते थे।
2: आजकल ऐसा नहीं है?
3: आजकल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि मोतिया कोई भी स्टेज पे उसको आप उसका ऑपरेशन करके कर सकते हैं।
2: पर नेसेसरी कब है उसका ऑपरेशन?
3: नेसेसरी पेशेंट को पता चलता है, कम दिखाई दे रहा है
2: जी,
3: पेशेंट को पता चल जाता है कि कम दिखाई दे रहा है। अच्छा, काफी टाइम पेशेंट ये भी कहते हैं नहीं नहीं चलने दो चलने दो, स्पेशली जो बुजुर्ग रहते हैं, लेकिन मैं उनसे फिर कहता हूं कि इतना भी नहीं रुकना कि आपकी आंख की रोशनी बंद हो जाए। दो चीजें होती हैं कि मोतिया जब पक जाता है तो बहुत गाढ़ा हो जाता है, तो ऑपरेशन के टाइम भी हमको टाइम लगता है, रिजल्ट्स भी काफी टाइम, सामने की कीकी में सूजन आने के चांसेस है, क्योंकि हम जो यंत्र इस्तेमाल कर रहे हैं फेको इमल्सिफिकेशन मोतिया तोड़ने के लिए, वो पावर यूज कर रहे हैं आंख के अंदर उसको तोड़ के
2: तो
3: निकाल के उसको साफ करने के लिए, तो उसका प्रेशर की वजह से। और मैं ऑलवेज कहता हूँ आपकी आंखों की उम्र आपकी उम्र की तरह
2: जी।
3: हम सब चाहते हैं हमारी आंखें 18 हों, लेकिन नहीं, अगर आप 60 साल के तो आपकी आंखें भी 60 साल की, तो इट हैज ऑल्सो एज्ड। अगर मोतिया हो और आपकी आंख के दृष्टि में आपको तकलीफ हो रही हो तो कोई भी स्टेज पे आप ऑपरेट करा सकते हैं। अभी सर्जरीज बहुत ही सरल हो गए हैं और रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है आजकल, काला चश्मा वगैरह भी निकल गया, टाके वगैरह तो है नहीं इस ऑपरेशन में, 1.8 या 2 मिलीमीटर की इंसिजन रहती है, तो कुछ रिकवरी बहुत फास्ट होता है। पेशेंट को हम तो कहते हैं पहले दिन से आप आँख खोल के सब देखो, जितना जल्दी आप देखोगे उतनी जल्दी आपकी आँख ठीक हो जाएगी। ड्रॉप्स डालने, जैसे दूसरी बात भी है, पहले अगर आपका पैर फ्रैक्चर होता तो प्लास्टर में लगा देते थे 6 हफ्ते टांग ऊपर करके, अभी कौन करता है? ऑपरेशन करके आपको बोलेंगे हफ्ते 10-15 दिन में आप चलने शुरू कीजिए।
2: जी जी।
3: आँख का भी वही है कि आप जितने जल्दी उसका इस्तेमाल करेंगे, हम कर क्यों रहे हैं ऑपरेशन आपका, आपको दृष्टि देने के लिए।
2: करेक्ट।
3: और उसके बाद भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं काला चश्मा पहन के बैठूंगा, मैं बाहर नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा, तो फिर आपको ही तकलीफ होनी है ना।
2: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कि जो लोग ज्यादा अवेयर नहीं है, जिनके मोतिया का पता देर से चलता है या नहीं चलता और वो उसी तरह से कैरी ऑन करते चले जाते हैं, तो ये पुराना मोतिया किस तरह बिगड़ सकता है और आंखों को किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है?
3: देखिए, जब ये मोतिया जो है ना एक हद तक ही आंख में झेल सकता है
2: जी,
3: क्योंकि क्या होता है वो एक पके हुए फल की तरह है। पका हुआ फल पेड़ से क्यों गिरता है, क्योंकि आजू बाजू से वो मॉइस्चर, उसका जो कवरिंग रहता है उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं
2: जी,
3: वो मॉइस्चर बाहर का जो वातावरण रहता है वहाँ से पानी खींचता है और वो गिर जाता है, सही, अगर आप उसने तोड़ेंगे नहीं तो।
2: बिल्कुल,
3: आँख में वही होता है कि अगर एक हद के बाद अगर आपने वो नहीं किया, जिसको हम लोग हाइपर मैच्योर यानी नॉर्मल से भी आगे निकल गई है केस, मैच्योर का ट्रैक तो मैच्योर हो गया
2: जी
3: ये हाइपर मैच्योर हो गया, ज़्यादा बुजुर्ग हो गया
2: जी,
3: तो वहाँ पे क्या होता है कि यही होता है कि जो लेंस की जो कवरिंग है वो धीरे धीरे करके पिघलने चालू होती है, आँख का जो बीच में का पानी है वो अंदर जाता है और वो फूल जाता है। अगर हम कहें कि पेड़ पे से तो फल नीचे गिर सकता है, आँख में कहाँ गिरेगा, आँख में जगह कहाँ है,
2: बिल्कुल,
3: तो अगर आँख में फट गया तो आँख का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा
2: जी,
3: आँख के अंदर बम फोड़ दिया आपने, क्या होगा आँख का, इमरजेंसी में ऑपरेशन करने पड़ती है, उसके बाद भी दृष्टि आएगी नहीं आएगी, कि जैसे हमने पहले कहा अगर पीछे की नस, मेन चीज पीछे की नस है, प्रेशर ज्यादा हो गया, आप पत्थर रख दो आपके हाथ के ऊपर कब तक सहलेगा
2: जी,
3: उसके बाद बड़ा वाला पत्थर रखो तो वो पीछे की नस खत्म हो गई तो गई दृष्टि, फिर ऑपरेशन करने के बाद भी नहीं आएगी
2: जी जी।
3: तो सही टाइम पे इसका कोई भी बीमारी में सही टाइम पे इलाज करना बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक जरूरी बात की तरफ अब मुड़ते हैं और वो है नेत्रदान
3: जी।
2: हम सभी को नेत्रदान के लिए एक फॉर्म भरना होता है
3: जी।
2: किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितने देर तक आंखें दान की जा सकती हैं और कैसे कहां जल्दी से संपर्क करके प्रोसेस किया जाए
3: जी? बहुत ज़रूरी है
2: जी,
3: सिर्फ नेत्रदान नहीं, अगर बाकी के भी जो भी ऑर्गन्स अगर काम कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों को ज़िंदगी दे सकते हैं
2: जी जी।
3: नेत्रदान में एक बात समझनी ज़रूरी है कि आँख का कौन सा हिस्सा इस्तेमाल होता है। नेत्रदान में पूरा आँख नहीं इस्तेमाल होता, सिर्फ सामने की कांच जो कॉर्निया है वो इस्तेमाल होती है, तो एक किसको फ़ायदा होगा
2: जी?
3: जिन लोगों की आँख की दृष्टि अगर कम हो गई है सामने की कांच की किसी बीमारी के वजह से या दुर्घटना के वजह से या किसी और कारण वजह से, तो उनमें ही ये काम आएगा नेत्रदान जो हम करते हैं। और वो बहुत लोग हैं जिनको फायदा हमने देखा हुआ है वो ऑपरेशन करके, काफ़ी सेंटर्स हैं आजकल तो ऑनलाइन, आप आपके नज़दीक में जो भी हो आप सिर्फ डाल दो, गूगल कर दो तो आपको वो आके जितने जल्दी करें वो, आप टाइम तो रहेगा, आप बोलो 10 घंटे 12 घंटे, सवाल वो नहीं है, अगर सामने की कांच सूख गई इसलिए आँख बंद कर देते हैं ना
2: जी, जी।
3: देहांत होने के बाद, तो भी वो तो आंसू की प्रक्रिया तो बंद हो जाएगी और सामने की कांच अगर सूख गई तो गई। तो जितने जल्द हो सके, अगर आप पूछे तो टेक्निकली आवर्स बियर्स में बात करना कोई अर्थ ही नहीं है
2: जी।
3: जितने जल्द हो सके कॉन्टैक्ट करने नियरेस्ट आई बैंक को, 24 आवर्स चालू रहते हैं वो, सभी जगह पे हैं, तो तुरंत आके वो लेके जाते हैं और तुरंत वेटिंग लिस्ट बहुत होती है तो इमीडिएटली उसका ऑपरेशन हो जाता है और आपके वजह से किसी ना किसी को आपकी दृष्टि आ सकती है
2: जी। वही मैं उसी बात पर आना चाहता था कि ये एक छोटा सा कदम
3: जी
2: किस तरह से लोगों का भला कर सकता है, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं होते और नेत्रदान की जो प्रक्रिया है वो उतनी फास्ट नहीं है हमारे देश में,
3: सही
2: लोग
3: है।
2: उस तरह से इस बारे में सोचते नहीं
3: है। नहीं, बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि अगर जितने जल्द करेंगे, मैं भी जानता हूँ कोई किसी का देहांत हो तो ये काफ़ी टाइम तो ये सोचा भी नहीं जाता
2: जी,
3: सबको दुख रहता है, पता नहीं क्या सिचुएशन में किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन अगर पहले से कुछ सोचा गया है कि किसी को करना है या किसी ने कहा है कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नेत्र दान करो या मेरे शरीर के बाकी ऑर्गन्स का दान करो, तो उनकी इच्छा सोच के अगर एटलीस्ट फैमिली के एक मेंबर ने अगर इनिशिएटिव ले ले तो बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, आप सोच भी नहीं सकते कितना फ़र्क पड़ेगा, कितनों को फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी इंसान की दोनों आंखें खराब हो गई, एक आंख से भी दृष्टि दे तो जिंदगी निकल जाती है ना।
2: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप,
3: एक हाथ एक पैर निकल जाए तो भी चलता है, लेकिन दृष्टि निकल जाए तो आप सोचिए कितनी दिक्कत होती है
2: जी।
3: उनके लिए
2: बहुत लोगों की मदद हो सकती है,
3: बहुत लोगों की मदद हो सकती है, लाखों की
2: जी। डॉक्टर साहब, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करते हैं, आंखों में किस तरह की स्पोर्ट्स इंजरी आप देखते हैं छोटे बच्चों से लेकर फिर आगे बढ़ती उम्र तक?
3: ये नॉर्मल है, आई मीन कोई भी इंजरी हो, हम आजकल नया नाम आ गया है स्पोर्ट्स इंजरी, लेकिन कोई भी इंजरी आंख के लिए इंजरियस है, क्रिकेट बॉल हो कुछ भी हो, हमारे टाइम गिल्ली डंडा हुआ करता था, विच वॉज परफेक्ट, जो आंख में जाके बैठ जाता था, अभी है नहीं। लेकिन क्रिकेट बॉल हो, कोई भी, इवन अ स्मॉल प्लास्टिक बॉल हमने देखा हुआ है वो खेलते टाइम, घर में खेलते टाइम, टीटी टेबल टेनिस खेलते टाइम। प्रॉब्लम ये है कि आंख में कहाँ पे लगे और कैसे लगे, ये बहुत जरूरी है। काफी टाइम हमने बड़े बड़े इंजुरीज देखे हैं लेकिन आंख बच गई है
2: जी।
3: काफी टाइम हमने एकदम छोटी सी इंजरी देखी और आंख में भयानक चीज हो गई है। तुरंत किसी को बताना बहुत जरूरी हो
2: जी
3: कि आंख में अगर किसी को लग जाए तो तुरंत चेकअप, कहीं भी नजदीक अस्पताल सभी जगह तुरंत जाके जांच करवा लीजिए, उसको डिले ना करना।
2: क्योंकि ये कुछ भी खतरनाक हो सकता है,
3: बहुत खतरनाक होता है। और एक और इंजरीज हम बहुत देखते हैं, इंडस्ट्रियल इंजरीज। ये बॉम्बे में तो स्पेशली जो भी लेट्स से जहाँ पे ये
2: फैक्ट्रियां हैं
3: या छोटे छोटे वर्कशॉप्स भी हैं जहाँ पे ग्राइंडर का काम करते हैं, मेरे पास बहुत पेशेंट आते हैं, उसके आंख में वो छींटे उड़ जाते हैं ग्राइंडर के
2: जी।
3: ग्राइंडर पे करते टाइम वो मेटल के छींटे उड़ते हैं। मैं हजार टाइम उनसे कहता हूँ आप कोई प्रोटेक्टिव ग्लास यूज कीजिए, ₹50 का आता है।
2: बिल्कुल, बिल्कुल,
3: वो हमारा सेट नहीं देता, सेट नहीं देगा। अपने देश में लाइफ इज वेरी चीप, सेट नहीं देगा। आप ₹50, आप जाके कहीं पे भी ₹50 उड़ा देते हो, आंख के लिए एक प्रोटेक्टिव ग्लास
2: नहीं कर सकते लोग।
3: और एक और चीज मैं देखता हूँ कि ज्यादातर होते कि ये मैं अभी तक समझा नहीं हूँ कि कोई वेल्डिंग कर रहे हैं, आपने देखा रहेगा वो गॉगल पहनते हैं, उसके बाजू में एक बंदा खड़ा रहता है बगैर गॉगल के उसको देखते हुए।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने,
3: ज्यादातर उसकी आंखों में उड़ता है।
2: हाँ ऑफकोर्स,
3: बिकॉज ही इज थिंकिंग मैं काम नहीं कर रहा तो मेरे आंख में नहीं उड़ेगा।
2: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: तो ये कहीं पे भी वेल्डिंग इंजरीज बहुत ज्यादा है एंड पीपल हैव लॉस्ट देयर आइज। तो बहुत, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग के प्रोटेक्टिव ग्लासेस, सेफ्टी अपने देश में अभी तक ये कंसेप्ट,
2: छोटे बड़े वर्कशॉप, ये इंडस्ट्रीज, यहाँ कोई सेफ्टी मेजर्स आंखों के, खास तौर
3: आंखों के, वो रखना बहुत, अभी तो एटलीस्ट हम देखते हैं कि हेलमेट्स आ गए हैं
2: जी,
3: बाकी चीजें आ रही हैं, लेकिन आंखों के बारे में बहुत कम मैं देखता हूँ कोई सेफ्टी गॉगल्स पहन के काम कर रहे हैं। ना कारपेंटर्स काम करते हैं, न इलेक्ट्रिशियंस काम करते हैं, न ग्राइंडर्स काम करते हैं, कोई सेफ्टी गॉगल्स यूज नहीं करता
2: जी।
3: ₹50 का मिल जाता है, हाउ मच इज इट।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब आपने गॉगल की बात की तो मैं उस सवाल पर भी आना चाहता हूँ कि ये जो रोड साइड तरह तरह के चश्मे मिलते हैं करामाती, ये कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं फैशन के चक्कर में?
3: जो नहीं, फैशन है उसके आगे क्या है, टोपी खरीद लो ऐसी, उसी को खरीदो,
2: लेकिन ये आंखों को नुकसान पहुंचा सकते
3: हैं? ना ना ना, नो नो नो, नहीं, वो दैट इज सी, वो कलर ग्लासेस है
2: जी,
3: प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस नहीं है। देखिए जब हम नंबर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस होते हैं, वो आप कहीं से भी खरीदो तो प्रॉब्लम है गलत वाले
2: जी।
3: ये जो रोड साइड वाले हैं, इट्स लाइक बाइंग अ हैट ऑन द साइड ऑफ द, आप टोपी खरीद रहे हो उसके साथ आप एक पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का आप खरीद लो, फैशन के लिए है
2: जी जी,
3: कोई पूरे दिन पहन के घूमने नहीं वाला है, गया है पिकनिक के लिए तो दे विल वेयर इट फॉर दैट टाइम एंड इट विल बी डिस्कार्डेड, उसके आगे कुछ नहीं। उसके वजह से कोई नुकसान तो नहीं होगा, वो फैशन है, उसके आगे कुछ नहीं है
2: जी। बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजरी की स्थिति में क्या ऐसा हुआ है कि कोई मरीज पहुंचने में, पहुंचाने में देर कर दी गई हो और उसके लिए वो घातक हो गया?
3: हाँ, काफी टाइम होता है, काफी टाइम होता है। आंखों में जितने जल्दी आप उसकी ट्रीट, सपोज लेट्स कहिए कि किसी को आंख में इंजरी हो गई और सामने की कांच फट गई या उसके अंदर कुछ चले गया, ये बहुत जो घातक इंजरी होती है आंख की, जो मार लगता है, जितने जल्दी उसको क्लीन करके उसको ऑपरेशन हो आंख बचा सकते हैं हम। अगर थोड़ी भी देर हो जाए, एक दिन निकल जाए, तो कुछ नहीं कर सकते और इतना बुरा लगता है कि यार इसकी आंख हम बचा सकते थे
2: जी,
3: लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। उसके बाद फिर सारे डायलॉग सुनाई देते हैं कि ये करना चाहिए था, वो करने चाहिए था, हमने इतना खर्चा किया लेकिन आंख तो चली गई। कोई आके बताता नहीं है कि आप टाइम पे पहुंचे नहीं वहां पे, कि आपने तुरंत ये नहीं करना था, आप कोई जाके केमिस्ट से कोई दवाई लेके डाल दी आंख में, दो तीन दिन तक आपने वैसे ही, ठीक है मजबूरी भी होगी, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, सबकी गलती नहीं रहती, कहीं पहुंच नहीं सकते या पैसे का प्रॉब्लम रहता है, लेकिन सभी जगह तो चिकित्सालय है, मुफ्त भी है ना अपने देश में। तो
2: बिल्कुल, जल्दी से मेडिकल हेल्प लेनी
3: लेना
2: बहुत ज़रूरी
3: है, जरूरी है, बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाना सुनते हैं जरूर से जुड़ा हुआ और उसके बाद आगे की बात करते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बारिश के मौसम में हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं और बारिश के मौसम से जुड़ी हुई आंखों की एक समस्या है, आंखों का आना। ये क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है या इसका क्या उपाय है?
1: जी, ये ज़्यादातर जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं, या कंजंक्टिवाइटिस है ना, हमने जो कंजंक्टिवा है, जो आंख के साइड के जो एरिया है उसके अंदर सूजन आना।
0: जी,
1: तो टिपिकल बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस जो हम सबको बचपन में हुई है, आजकल दिखाई नहीं देती। जैसे वो होता था कि आंख में से बहुत कीचड़ आ रहा है, सूजन
0: जी
1: आ रही
0: जी
1: है,
0: जी
1: आजकल ज़्यादातर बम्बई में कंजंक्टिवाइटिस पूरे साल में रहता है।
0: जी जी
1: ये एनवायरमेंटल हो गया है
0: हाँ,
1: और वायरल टाइप ज़्यादा आता है, जो आंख लाल आती है, सीजन चेंज होता है जिसको,
0: तब होता है।
1: तब वहाँ आता है। एलर्जीज भी बहुत आ गए हैं।
0: क्या ये जो लगातार रीडेवलपमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से जो डस्ट उड़ती है उसका भी आंखों को नुकसान? ओहो,
1: सबसे ज़्यादा। अच्छा, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एक आदत हम सब में हमने देखी है, हम आंख खोल के पानी मारते हैं।
0: हाँ,
1: मेहरबानी करके बंद कीजिए।
0: ओहो,
1: अपने आंसू और बाहर का पानी एक नहीं है, अपने आंसू और गंगा जल भी एक नहीं है। अपने आंसू एक दवाई है जो प्रकृति ने अपने आंखों को स्वच्छ रखने के लिए रख दी है, अपने आंखों को निरोगी रखने के लिए दिए। इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स रहते हैं आँख के अंदर, और वो अपने आँख को प्रोटेक्शन देता है। अपने आंसू सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है।
0: जी
1: तो हर टाइम जब हमारी आँख खोल के, जैसे हमने अब कंप्यूटर विजन के विजुअल के बारे में, हम आँख खोल के बंद करते हैं, ये अपना एक वाइपर है जो अपनी
0: जी
1: आँख को साफ कर रहा है।
0: जी
1: तो जब कभी हम दवाई डालते हैं तो अपने नाक से हलक में आती है, बाहर से तो नहीं आती।
0: जी
1: तो हर टाइम जब भी हम आँख झपकते हैं तो एक नया आँख का पर्दा तैयार हो रहा है, आँख अपने आप से साफ कर रहे हैं। आप पानी क्यों मार रहे हैं? पानी मारने में क्या होता है, कोई गर्म पानी तो नहीं मारेगा,
0: हाँ,
1: ठंडा पानी मारेगा,
0: और वो तेज तेज
1: तेज
0: चीते।
1: मारेगा। उसके वजह से क्या होगा, आपने भी किया होगा, आपकी आंख में और जलन होगी और आंसू बाहर आएंगे। जलन क्यों होती है? क्योंकि जो सामने की जो आंसू का पर्दा है वो टूट गया, सामने की कांच पे जाके पानी लग गया है, तो दिमाग को बहुत तकलीफ हो गया
0: तो
1: है,
0: ये किसी भी परिस्थिति में आंखों के
1: किसी भी
0: ऊपर?
1: परिस्थिति में। हाँ, और गर्म आंसू क्यों आते हैं? क्योंकि दिमाग गर्म आंसू भेज रहा है और ठंडा बाहर फेंकने के लिए।
0: ओके,
1: तकलीफ हो रही है
0: जी जी जी
1: आंख
0: जी
1: को पानी
0: जी
1: मारने में। आंख में कचरा जाए और पानी मारे तो ठीक है, लेकिन वो कचरा वो पानी की वजह से नहीं निकलता, जो ज़्यादा आंसू तैयार होते हैं वो उसको बहा देते हैं।
0: जी
1: जब हम सोते हैं और सुबह उठते हैं तो आंख में से थोड़ा सा मैल निकलता है।
0: जी
1: अब आप सोचिए, सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं, शहरों में पंखा है, एसी है, धूल नहीं है, घर के अंदर तो नहीं है, बाहर है लेकिन अंदर नहीं है, फिर सुबह क्यों मैल आनी चाहिए? हम रास्ते पे चल रहे, थोड़ी मैल आ रही है आंख में से, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो अपने आंसू का प्रभाव 70% से कम हो जाता है,
0: जी,
1: इसीलिए सुबह थोड़ी मैल निकलती है जमा हुई।
0: दिन में नहीं
1: दिन में
0: निकलती।
1: नहीं निकलती, उल्टा होनी चाहिए ना, आप धूल में चल रहे हैं तो आपको तभी होनी चाहिए।
0: जी
1: तो मेन चीज मैं सारे पेशेंट्स को कहता हूं, मेरे, आंख को अकेले छोड़िए, आंख को तकलीफ नहीं देना, आंख आपको
0: हाँ,
1: उससे भी ज्यादा तकलीफ देगी। जितना
0: ओके,
1: हो दवाई अवॉइड कीजिए,
0: हाँ,
1: जरूरत हो तो जरूर दवाई डालिए। काफी पेशेंट, नहीं, आंख लाल हो गई है, वायरल है, देख लेते हैं, हम नेचुरली इसको फाइट करेंगे, मत कीजिए आंखों में, प्लीज मत कीजिए, क्योंकि आंखों में कहीं इन्फेक्शन बैठ गया तो
0: जी,
1: लेने के देने पड़ जाएंगे,
0: तुरंत डॉक्टर के पास
1: तुरंत
0: जाइए।
1: जाइए। लेकिन बाकी जो है, जो आजकल जैसे मैंने कहा है, जो 500 PhD जो कह रहे हैं कि आप में आप ये डालिए वो डालिए,
0: हाँ
1: ये सुरमा डालिए वो डालिए, जितना हो आँख को अकेले छोड़िए। अगर
0: जी,
1: आपको लेडीज आईलाइनर यूज़ करती हैं, पहले काजल यूज़ किया जाता था, अंदर से लगाते थे, वो बहुत जलता था,
0: जी
1: हमारे माओ ने सबको किया, हम छोटे थे
0: हाँ,
1: तब भी,
0: लड़कों को
1: हाँ
0: भी,
1: लड़कों को भी, हमको भी हुआ है और
0: लड़कियों
1: बहुत जलता था, मुझे याद है। आईलाइनर आ गए हैं जो काफ़ी
0: जी
1: सेफ़ है लेडीज़ के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: जो बाहर से लगते हैं, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन,
0: यस
1: वहाँ पे लगा दी। जितना हो आँख को अकेले छोड़िए,
0: हाँ,
1: ये सबसे मेरी विनती है, जितना हो अपने आँख को अकेले छोड़िए। हाँ, भगवान ने बहुत प्रोटेक्शन दिया है आँख को।
0: जी,
1: सोचिए, आपके खुद के आँख में आप उंगली डाल सकते हैं?
0: नहीं,
1: क्यों? नाक में तो डाल सकते हैं, कान में, मुंह में डाल सकते हैं, हाँ आँख में क्यों नहीं डाल सकते आप?
0: क्योंकि सबसे नाजुक पार्ट
1: सबसे
0: है।
1: नाजुक चीज है, बहुत
0: जी
1: बढ़िया, सबसे नाजुक चीज है, उसको सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन है। आप सोचिए, आपके खुद के आँख के अंदर आप उंगली नहीं डाल सकते। हाँ,
0: जी
1: आपको अगर पागलपन करना हो, आपको इंजरी करना हो तो दूसरी बात है, नॉर्मल कोई भी अपनी आंख के अंदर उंगली डाल नहीं सकता, वेरी
0: जी
1: सिंपल।
0: जी
1: सो लीव योर आइज अलोन, अकेले छोड़िए।
0: बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि आंखों में पानी के छींटे नहीं डालने चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग ये करते आए हैं।
1: जी जी, और ये हमें कहा गया है कि योग में ये करते हैं। आई टोल्ड हिम, आपको अगर थकावट हो रही है
0: जी,
1: आंख बंद करके ठंडे पानी मारिए, इफेक्ट वही है।
0: हाँ,
1: आप रुमाल ठंडे पानी में डाल के आंख के ऊपर रखिए, इफेक्ट वही है।
0: लेकिन खुली आंखों के ऊपर,
1: खुली आंखों की वजह से नहीं। हाँ, और वो क्या करते हैं, वो स्पा में जाइए, कागड़ी रखते हैं, सेम चीज है क्या, आंख बंद कर रहे हैं। जब आप आंख बंद करेंगे तो ये सिस्टम बंद हो रही है, आंख को आराम आ रहा है
0: जी।
1: काकड़ी ठंडी रखेंगे, कोई गरम नहीं रखेंगे, कांदा तो कोई रखता नहीं है, ठंडी वाली रखेंगे।
0: सही है।
1: तो ठंडा क्या होता है, तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना
0: जी,
1: जब ठंड होता है। जैसे स्पोर्ट्स इंजरी की बात कर रहे थे, पहली चीज क्या लगाते हैं, बर्फ लगाते हैं ना
0: जी,
1: गर्म थोड़ी लगाते हैं, वहां पे हॉट वाटर बैग नहीं लगाएंगे ना। आपको लग गया
0: तो
1: गिर गए, तो पहला खेलते टाइम तो पहला बर्फ लगाएंगे ना
0: जी।
1: बर्फ क्यों लगाते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स को हम कंस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं ना
0: जी, जी
1: उसको हम कम करना चाहते हैं। सेम चीज है आंख के लिए, आप आंख बंद रख के कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुंह धोते टाइम नहाते टाइम थोड़ा जाता है, वो तो नॉर्मल है
0: जी।
1: ओके, नहाते टाइम तो हम आंख बंद करते हैं, लेकिन थोड़ा तो पानी जाएगा ही, वो तो ठीक है। इसलिए तो आंख शावर के बाहर आने के बाद आंख लाल होती है, क्यों हो रही है?
0: बिल्कुल, क्योंकि वो पानी
1: सेम पानी आंख को अकेले छोड़िए, बेस्ट ट्रीटमेंट
0: जी। बहुत ही बढ़िया बात आपने बताई है। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, खामोशी फिल्म का गाना। हमने देखी है इन आंखों की बहती खुशबू, गुलजार साहब का गाना है।

0: डॉक्टर साहब, बहुत सारी जरूरी बातें हमने की। चूंकि ये जमाना जो है ये आधुनिकता का जमाना है, बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां इन दिनों में देखी जा रही हैं। आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस कौन सी हैं जिनकी आप चर्चा करना चाहेंगे?
1: आंखों से जुड़ी रेयर डिजीजेस बहुत कम है
0: जी,
1: और अनफॉर्चुनेटली वो डायग्नोज भी नहीं होती। काफ़ी टाइम ट्यूमर्स रहते हैं, आँख के अंदर भी ट्यूमर्स रहते हैं, या पीछे की पर्दे की अलग अलग बीमारियाँ रहती है, पैदाइशी बीमारियाँ रहती है पीछे के पर्दे की। एक बीमारी है जिसको हम लोग रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा कहते हैं। आपके लास्ट AIR में एक लिसनर ने मुझे फ़ोन करके पूछा भी था, जिसके वजह से पीछे के पर्दे को जो खून आता है वो खून पेशियाँ सूख जाती हैं।
0: ओके,
1: तो वो जो है और वो प्रोग्रेसिव है, बचपन में शुरू हो जाती है और काफ़ी टाइम पेशेंट 25-30 तक अंधे भी हो सकते हैं, उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो ऐसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, ये है, तो काफ़ी रेयर डिजीज़ है। लेकिन एक चीज़ हमारे कन्वर्सेशन में रह गया, वो बहुत बहुत ज़रूरी आजकल के ज़माने में, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं।
0: जी जी हाँ, उसका जिक्र हुआ था और हाँ, उसकी बात करनी जरूरी।
1: वो बहुत, बिकॉज रेयर तो ठीक है
0: जी,
1: ये कॉमन, मेरे हिसाब से रेयर भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रेटिनोपैथी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि डायबिटीज़ बहुत बढ़ रहा है, मधुमेह बहुत बढ़ रहा है अपने देश में। आई थिंक वी आर द कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डायबिटीज़ का। एक और कारण होगा, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन इतनी है, तो ऑब्वियसली उतने ज़्यादा लोग होंगे। तो डायबिटीज़, अभी आप भी सभी जानते हैं कि डायबिटीज़ की वजह से क्या क्या बीमारियाँ होती है। सरल मैं आपको बता देता हूँ, आँखों में डायबिटीज़ में मोतिया जल्दी आ सकता है, ग्लोकोमा कांच बिंदु में बढ़ावत हो सकती है, और सबसे खतरनाक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी क्या? रेटिना यानी अपना पर्दा, पर्दे में आने वाली सूजन। तो हमारे बॉडी में लाखों अनगिनत करोड़ों सेल्स हैं
0: जी,
1: ये सेल्स जो हैं वो हमारे बिल्कुल जैसे एक दीवार में जो ईंटें रहती हैं और उसके बीच में सीमेंट रहता है, वैसे ये सेल्स हैं। तो जब कभी अपने बॉडी में डायबिटीज़, बीमारी क्या है, हम कहते हैं डायबिटीज़ शुगर बढ़ने की बीमारी है, डायबिटीज़ बॉडी में इंसुलिन कम होने की बीमारी है, शुगर बढ़ने की बीमारी नहीं है।
0: जी जी,
1: क्योंकि अपने बॉडी में हम जिंदा शुगर पे और पानी पे, ये अपना पेट्रोल है।
0: बिल्कुल,
1: हमारे दिमाग में एक पॉइंट है जिसको हंगर सेंटर कहते हैं। जब बॉडी का शुगर कम होता है, दिमाग सिर्फ शुगर पे चलता है।
0: जी,
1: आप कोई भी चीज खाओ, करेला भी खाओ, इट टर्न्स इनटू अ डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर।
0: ऑफ कोर्स,
1: तो वो हंगर सेंटर जो रहता है जब हमारा शुगर लेवल ड्रॉप होता है, इसलिए आप उपवास करें या कुछ करें तो चक्कर आने चालू होते, ये होते, क्योंकि दिमाग को शुगर कम हो रहा है। तो हम कुछ खा लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे दिमाग में एक सैटाइटी सेंटर है कि बाबा ये शुगर लेवल नॉर्मल हो गई। ठीक है, ये नॉर्मल प्रक्रिया है नॉर्मल ह्यूमन बींग्स।

0: इसीलिए हमको शुगर चाहिए। और इसका जो संतुलन होता है ये इंसुलिन करता है जो पैंक्रियाज में है। हम जब कभी खाते हैं इंसुलिन आ जाती है और उसको लेवल बराबर ला देती है। तो जिनको डायबिटीज है जेनेटिकली हो या किसी और चीज़ की वजह से हो, उनका इंसुलिन लेवल जो है वो ड्रॉप होने चालू होता है। अब हमारे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम डायबिटिक है, हम गोलियां टाइम पे खाते हैं, हम वॉक के लिए जाते हैं, हम मीठा नहीं खाते, तो भी हमारा शुगर जो है वो बढ़ रहा है। ये क्यों हो रहा है, शक्कर क्यों बढ़ रही है? उनको ये समझना ज़रूरी है कि आपका शुगर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आपकी इंसुलिन और घट रही है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये बहुत ही जरूरी है समझना कि आपकी इंसुलिन घट रही है तो ऑब्वियसली आपकी शुगर बढ़ेगी।
1: बिल्कुल,
0: ये जो तराजू है वो मेंटेन नहीं हो रहा,
1: वो बैलेंस नहीं है।
0: हाँ, बैलेंस नहीं है। और एक हद के बाद शायद प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है इंसुलिन का, तो ऑब्वियसली वो पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है इंजेक्शन के तौर। अभी भी इंसुलिन की गोली आई नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो उनको इंसुलिन लेना पड़ता है उसको संतुलित में लाने के लिए। अच्छा ठीक है, मेरी शुगर बढ़ रही है, क्या फर्क पड़ता है मुझे, बढ़ने दो। प्रॉब्लम क्या होता है कि अपना शरीर जो है उसका प्रोसेसिंग एक लेवल है। जैसे हमने देखा है अभी बहुत बारिश गिर गई तो क्या हो गया, बांध के ऊपर से पानी आ गया।
1: जी
0: ठीक है, अपना बॉडी का भी एक बांध है जिसको रीनल या किडनी का थ्रेशोल्ड कहते हैं। जैसे एक पानी बढ़ता है तो हम छोड़ देते हैं उसको पानी। अपने बॉडी में 180 या 200 के ऊपर शुगर जब होती है तो बॉडी उसको पेशाब में से निकाल देती है।
1: जी
0: इसीलिए पेशेंट का पेशाब चेक किया जाता है डायबिटीज का।
1: हाँ,
0: पेशेंट पूछते हैं हमको खून की बीमारी आप पेशाब क्यों चेक कर रहे हैं। सही है, लेकिन ये इसकी वजह से चेकिंग होता है क्योंकि वहां से वो निकलते जाता है। तो इसलिए आप देखें डायबिटिक्स में यूरिन +2 +3 आती है हाई डायबिटिक्स में।
1: जी
0: अच्छा, पेशाब से निकल जाए अच्छा है ना, बाहर निकल रहा है तो क्या, नहीं नॉन डायबिटिक्स में तो नहीं जा रहा, डायबिटिक्स में जा रहा है, तो इसके लिए डायबिटिक्स को किडनीज की बीमारी ज्यादा होती है।
1: जी जी
0: ठीक है। इंसुलिन जो है वो हीलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा रहेगा आपके कोई रिलेटिव का कोई बड़ा सर्जरी हो गया, वो ही और शी वाज वो डायबिटिक है, उनको इंसुलिन पे रखा जाता है थोड़े दिन तक, फिर बाद में टैबलेट्स पे वापस लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि बॉडी के हीलिंग के लिए इंसुलिन सब जरूरी है।
1: जी जी
0: ओके। आंखों में क्या होता है, आंखों में पीछे के पर्दे में बहुत बहुत ज्यादा सेल्स है।
1: जी
0: ठीक है, वो सेल्स के बीच में का अभी सिंपल चीज है, बॉम्बे में एक शब्द सबको पता है, ये शायद अपने देश में सभी भी हुआ, मतलब मुंबई में एक शब्द सबको पता है, लीकेज। सभी के घर में लीकेज है।
1: जी
0: बड़े बड़े टावर से लेके झुग्गी झोपड़ी में सबके घर में बारिश जब होती है या तो किसी कारणवश ऊपर वाले के यहां से लीकेज आता है।
1: जी जी,
0: ये लीकेज जो रहता है आंखों में किस चीज का लीकेज होगा? डायबिटीज में क्या होता है कि ये बैलेंस मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी जो सेल्स के बाहर का एरिया एक्स्ट्रा सेलर एरिया वो इंट्रा सेलर शिफ्ट करता है। जब शुगर नॉर्मल होती है तो ये दोबारा वापस जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक कि ये यहां हो ये तकलीफ देने वाला है। ऑलराइट, तो आंखों में सेल्स जो है उसके बीच में का सीमेंट जो है वो निकल जाता है। अभी आपके घर में पानी की पाइपलाइन जा रही है, अगर आपका सीमेंट पुखर जाए तो आपको पानी का लीकेज होगा। आंखों में खून पेशी जा रही है तो लीकेज किस चीज का? ब्लड निकल आता है।
1: जी,
0: तो ब्लड के छींटे आते हैं पीछे के पर्दे में, उसके वजह से पीछे के नस में सूजन आती है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो सेंट्रल एरिया मैक्यूला जहाँ पे लाइट जाके लगता है और जहाँ से दिमाग तक जाता है वो एरिया में एक भी खून पेशी नहीं है। वरना हमको सारी खून अभी तो दिखाई नहीं देता ना, कुछ भी क्लियर दिखता है क्योंकि वहाँ कुछ कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो एरिया में खून पेशियाँ आए या खून आए और सूजन आए तो आँख की दृष्टि तो कम हो ही है आपकी।
1: बिल्कुल,
0: और ज़्यादा कहीं खून पेशी फट जाए जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज कहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर ऑपरेशन इंजेक्शन ये सब चीज़ें होती है। और 8 या 10 साल जिसका भी डायबिटीज जिनको है, आंख का चेकअप कराना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पता नहीं चलता। हमारे पास पेशेंट आते हैं जब आंख में पीछे में ऑलरेडी खून जमा हो गया है।
1: जी,
0: उनको पता है सडनली आंख में एक दिन रोशनी कम होती है, चेकअप के लिए आते हैं, देखते हैं कि खून आ गया है। पूछते हैं शुगर कितना है, सर 300 350 चल रहा है। तो शुगर जो है आपको कुछ भी करो लेकिन खाना खाने के बाद 200 के नीचे रखो और रेगुलर चेकअप करना। आजकल हमारा बाकी भी चेकअप्स है जो आपको 3 महीने का ये सब आपको देते हैं वो लोग, लेकिन चेकअप करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक्स को शुगर कंट्रोल, डायबिटीज सबसे खतरनाक बीमारी है सर।
1: जी,
0: डायबिटीज की दो ही चीज़ें हैं, या तो आपके साथ ऊपर जाती है आपको ऊपर लेके जाती है, तीसरा नहीं है।
1: जी,
0: डायबिटीज ब्लड प्रेशर ये शरीर की कमजोरियाँ हैं, ये सर्दी बुखार नहीं है कि आप क्रोसिन लो डोलो लो एंटीबायोटिक लो चले जाने वाली है।
1: इनके साथ सावधानी से जीना पड़ता है,
0: इनको कंट्रोल करना पड़ता है।
1: जी,
0: ये क्योर नहीं होती अनफॉर्चुनेटली।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: क्योंकि शरीर की कमजोरियां हैं तो ये क्योर नहीं होती।

0: होती,
1: जी
0: इनको कंट्रोल करते हैं हम
1: जी।
0: सो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी, जैसे आपने जो भी मुझसे पूछा, और आजकल हम लोग इतने पेशेंट देख रहे हैं और हम सोचते हैं कि हाई यार ये एक साल पहले आया रहता तो हम लोग इसकी आंख की रोशनी बचा सकते थे, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, जो बची कुची रोशनी है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दो अलग अलग चीजें है ना,
1: बिल्कुल।
0: नॉर्मल दृष्टि अलग है कि आपको सब अच्छा दिखाई दे रहा है
1: जी,
0: और एक है कि आपको जो बचा कुचा है वो दिखाई दे रहा है। हम तो चाहते हैं कि सबको अच्छा दिखाई दे जिंदगी भर।
1: बिल्कुल, और इसके लिए जरूरी है कि जिन लोगों को डायबिटीज है वो नियमित रूप से अपनी आंखों का चेकअप कराएं,
0: बहुत जरूरी है,
1: ताकि उनकी आंखें स्वस्थ रह सकें और किसी भी तरह की कोई मुसीबत ना आए।
0: जी
1: डॉक्टर साहब, यहां एक गाना सुनते फिर आगे की थोड़ी बातें करेंगे।
0: जरूर।

0: डॉक्टर साहब, ये हमने डायबिटीज की बात की, आपने कहा कि ये एक बहुत जरूरी मुद्दा था जो एक जीवन शैली से जुड़ी समस्या बन गई है। डायबिटीज में असर आंखों पर सीधे पड़ता ही पड़ता है। कुछ और समस्याएं जिनकी अब यहां पर बात की जाए।
1: जी, ब्लड प्रेशर है उसमें से एक।
0: हाँ,
1: हमारे आंखों में सबसे ज्यादा डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है।
0: जी,
1: ब्लड प्रेशर में भी वही होता है। अगर ब्लड प्रेशर, सपोज आपका बीपी बढ़ते जाएगा तो क्या हो सकता है? दिमाग में नस फट सकती है, स्ट्रोक होता है आदमी को, अर्धांग हो सकता है या तो गुजर सकता है। तो आंखों में भी काफ़ी टाइम, अगर आँख की जो अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर बढ़े, कि शरीर का ही हिस्सा है। देखिए, आँखों को बहुत ही बचाया गया है। देर इज समथिंग जो हम लोग, एक ब्लड ब्रेन बैरियर भी है और ब्लड रेटिनल बैरियर भी है।
0: जी जी,
1: तो दिमाग अपने को बचाएगा, और क्योंकि रेटिना दिमाग का हिस्सा है, वो अपने को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद के बाद वो बचा नहीं सकता। तो वहाँ पे जो है ब्लड प्रेशर भी बहुत प्रॉब्लम देता है। तो आंखों में काफ़ी टाइम जो पीछे की नस फटने का जो है, पीछे के पर्दे में, वो जो मैंने आपको कहा डायबिटिक के वजह से विट्रियस हेमरेज होता है, वो होता है। तो ये चीज़ें जो है, हाँ, एक और चीज़ जो लोगों को दे, काफ़ी टाइम पेशेंट हमको कहते हैं कि हमारे आँख के सामने कुछ घूम रहा है, काले डॉट दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम लोग फ्लोटर्स कहते हैं। ये बहुत कॉमन है।
0: जी,
1: ये थकावट के बाद आपको भी दिखाई देंगे। अगर ये लाइट देखो और व्हाइट बैकग्राउंड देखो, आपको दिखाई देंगे, सभी में है।
0: जी जी,
1: फ्लोटर्स आर नॉर्मल, ये अभी हम कहते हैं। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाएगा, नीचे देखेंगे तो नीचे जाएगा, ओके। लेकिन अगर ये फ्लोटर्स ज़्यादा आ जाए, बड़े साइज के होने चालू हो, ये छोटे वाले रहते हैं जैसे मच्छर मक्खी की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन अगर वो मोटे दिखाई दे, गोल दिखाई दे, काले दिखाई दे, लाल दिखाई दे, तो तुरंत आँख के डॉक्टर को आपको बताना है। इसका ये मतलब है कि दो चीज़ें, या तो कहीं पे खून आ गया है, या पर्दे में, या विट्रियस में, पीछे के जली में, या तो काफ़ी लोग कहते हैं कि हमको आँख में ऐसे लगता है कि जैसे कोई बिजली चमक रही है एक साइड से। ये बिजली क्यों चमकती है? क्योंकि जो पीछे का पर्दा है, जैसे मैंने कहा, वो आँख का हिस्सा नहीं, वो आँखें वहाँ पर चिपका हुआ है। तो जहाँ पर वो चिपका है, काफ़ी टाइम वहाँ से वो सटक भी सकता है, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं।
0: ये प्रेशर की वजह से होता है?
1: काफी चीजों की वजह से होता है, स्पॉन्टेनियस भी होता है।
0: अच्छा,
1: स्पॉन्टेनियस हार्ट अटैक आता है ना आदमी को।
0: जी जी,
1: सेम चीज है, डिटैचमेंट भी स्पॉन्टेनियस हो सकती है, अनफॉर्चुनेटली।
0: जी जी,
1: और पीछे का पर्दा सरक जाए तो दिस इज वेरी डेंजरस, तुरंत ऑपरेशन करने पड़ता है उसको दोबारा बिठाने के लिए। अब उसका भी कितना एक्सटेंट है, उसके भी बहुत टाइप्स है, लेकिन कितने उसका भाग निकल गया है, नहीं निकल गया है, ये सब चीज में जितना जल्दी करें, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप किसी की उंगली कट जाए, अब जितने जल्दी जाके जोड़ो, उतने जल्दी वो नॉर्मल हो ना हो, लेकिन रहेगा तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: लेकिन अगर किसी ने कटी हुई उंगली लेके आप एक दिन या दो दिन घूम लो, तो क्या होने वाला है? वो
0: बाकायदा उसमें तो फिर नुकसान,
1: जान ही नहीं आएगा ना उसमें, जान निकल जाती है।
0: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे बुजुर्गों में हमने ये देखा है कि उनको नियमित रूप से आंखों में डॉक्टर इंजेक्शन लगाने के लिए बोलते हैं। वो कौन सी बीमारी है?
1: ये डायबिटिक रेटिनोपैथी में होता है, एक जिसके अंदर अगर पीछे के पर्दे में सूजन हो। एक और चीज है बुजुर्गों में, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं।
0: ये क्या होता है?
1: सो मैक्युला जो मेन एरिया है, सेंट्रल एरिया जहां पे लाइट जाता है, उसको, और हिंदी में शब्द है ही नहीं, उसको मैक्युला ही कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, या तो मुझे पता नहीं है। एज रिलेटेड हम सब समझते हैं, उम्र के वजह से मैक्युला में डिजेनरेशन, यानी वो कमजोर हो जाता है। उसके दो टाइप है, एक जिसको ड्राई कहते हैं, सूखा हुआ, या वेट, गीला हुआ।
0: अच्छा,
1: हाँ, ज्यादातर उम्र के वजह से, क्योंकि जैसे अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा झिरने चालू होता है, नीज खराब हो जाती हैं, यू नो, हिप हो जाता है, हार्ट हो जाता है, तो वैसे ही वो जो भाग है वो धीरे धीरे करके उसकी ताकत उसकी निकल जाती है। तो ऑब्वियसली जो लाइट वहां पे जा रहा है, वहां से दिमाग तक नहीं पहुंच रहा। तो उसके लिए दवाइयां हैं आजकल जो हम लोग गोलियां जो देते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम क्या होता है कि वो इतना झिर जाता है कि उसके अंदर पीछे सूजन या पानी आने चालू होता है, जिसको हम लोग वेट टाइप कहते हैं। तो उसके लिए ये पिछले 10 सालों में ही आए हैं, इंजेक्शन आए हैं, काफ़ी अच्छे हैं, जिससे वो सूजन कम की जा सकती है।
0: जी जी,
1: उसके लिए पहले स्कैन करते हैं हम लोग, जिसको OCT कहते हैं, इट्स लाइक अ CT स्कैन ऑफ द आई। तो उसके वजह से पता चलता है कि कितनी सूजन है।
0: इसके लक्षण क्या होते हैं इस सूजन के?
1: लक्षण कम दिखाई देता है।
0: अच्छा,
1: और कोई नहीं।
0: जी,
1: कम दिखाई देता है। तो रेगुलर चेकअप्स के लिए जब बुजुर्ग आते हैं, तो पीछे का पर्दे का तो जांच तो हम लोग करते ही हैं। अगर पता चला कि बाबा ये ARMD है उनको,
0: जी जी,
1: तो ड्राई वेट टाइप देखने में तो पता चलता है, लेकिन उसका कंक्लूजन रहता है अगर हमने वो स्कैन करें तो। तो स्कैन करने को, बिकॉज स्कैन इट्स लिटरली लाइक अ सीटी स्कैन ऑफ द रेटिना
0: जी,
1: तो हमको बराबर स्लाइसिस उसका बराबर शेप दिखाई देता है, वहां पे सूजन दिखाई देती है, तो उसके मुताबिक फिर जो हमारे रेटिना के स्पेशलिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं कि इनको इंजेक्शन से वो सूजन कम करें। गोलियां काम नहीं करती वहां पे इतनी अनफॉर्चुनेटली, ड्रॉप्स हम लोग देते हैं लेकिन इंजेक्शंस जो वहां पे आंख में इंजेक्ट होती हैं उससे तुरंत सूजन कम होने, बिकॉज डायरेक्ट वहां पे पहुंच सकता है
0: जी जी,
1: तो वो सूजन कम होने शुरू हो जाती है, लेकिन उसका भी कितने लगेंगे इंजेक्शंस ये हम बोल नहीं सकते, वो सूजन के ऊपर है। तो अगर काफी पेशेंट में हमने देखा एक दो में भी ठीक हो जाता है, कहीं तो सालों उनको चार पांच लगते हैं या आते जाते रहते हैं, बहुत दुखद है, ज्यादातर बहुत बुजुर्ग लोगों में होता है
0: जी जी,
1: क्योंकि उस उम्र में जब उनका हालचाल बहुत कम होता है तो आंख की रोशनी उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है कि हमको मोबाइल देखना है या टीवी देखना है, लेकिन फिर हम कुछ शरीर में देखिए लिमिटेशंस हैं, आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आपकी बढ़ जाए, जो हमने प्रैक्टिस शुरू की थी 35 साल से आँख के डॉक्टर हैं, अगर हमसे कोई कहता कि ये टेक्नोलॉजी आप देखोगे आप रिटायर होने के पहले, तो मैं कहता था आप झूठ बोल रहे हैं
0: जी जी जी,
1: इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है मेडिकल में सभी चीजों में, आप भी जानते हैं वेदर मोबाइल्स हो या कोई भी चीज में, टेक्नोलॉजी हर 2-3 साल या 5 साल नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बाकी शरीर में भी आप देखते हैं जो सर्जरीज वगैरह में इतनी मेडिकेशन में आई है, वैसे आंखों में टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन सभी चीज का एक लिमिट है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: और वो जो सीमा है वो अपनी ह्यूमन बॉडी है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि अभी तक कोई समझ नहीं पाया चलती कैसी है
0: ये अपने आप में एक चमत्कार,
1: ये अपने आप में एक चमत्कार है, हम देखते कैसे हैं वो भी चमत्कार है। आप भी जानते हैं वर्चुअल इमेज, अभी वर्चुअल यानी क्या हो गया,
0: बिल्कुल
1: उल्टा इमेज यानी दुनिया उल्टी है और हमको सीधे दिखाई दे रही है
0: ये भी कमाल की बात है,
1: आप जानते हैं ना, वापस जाइए वापस 9th स्टैंडर्ड फिजिक्स पे,
0: यस यस यस,
1: वर्चुअल इमेज है, अरे वर्चुअल कैसे हो गया,
0: हमारी आंखों में
1: हम एक दूसरे को देख रहे हैं क्या, हम उल्टे हैं, अच्छा वहां पे जाके इमेज उल्टी हो जाती है क्या यार, ये सवाल का प्रश्न मैं अभी तक खुद नहीं
0: कर सका बचपन से, मामला फिलोसफी की तरफ,
1: हाँ बिकॉज एक हद के बाद तो शायद जो भी हो, नेचर हो, भगवान हो, जो भी हो, दे हैव केप्ट समथिंग विद देम एंड में, कि आप वहां तक उस हद तक हम नहीं जा सकते।
0: यस डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और वो ये है कि बड़ी अजीब बात है कि कई लोग अपनी हैबिट में ये रखते हैं कि रात को सोने से पहले एक ड्रॉप डाल दें, टीयर ड्रॉप जैसी कोई चीज, या कोई एक रेगुलर ड्रॉप डालते हैं ताकि आंखें ठीक रहें, ये क्या है और ये क्या नुकसान पहुंचा सकता है?
1: दोबारा कहता हूँ, जरूरत हो तो जरूर डालना ना हो
0: डॉक्टर दें तब डालना,
1: हाँ अगर आपके डॉक्टर ने कहा हो रात को सोते टाइम डालिए तो जरूर,
0: सेल्फ मेडिकेशन इज डेंजरस,
1: सेल्फ मेडिकेशन प्लीज कृपया करके ना करें जितना सेल्फ देखिए ज्यादातर तो ये डालते हैं वो लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स रहते हैं
0: जी जी,
1: हार्मलेस रहते हैं, वो अपने आंसू मिमिकिंग, अपने आंसू को ही मिमिक करते हैं,
0: रिप्लेस करें,
1: रिप्लेस करें, वैसे ही रहते हैं, तो उनकी हानि नहीं होती, लेकिन अंत में केमिकल है ना
0: जी,
1: अगर नेचुरल है, और हम बड़ी आजकल सारी बातें नेचुरलोपैथी पे करते हैं, तो आप नेचुरल रहिए ना, नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, बहुत फर्क है,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: नेचुरल प्रोडक्ट्स मत डालिए, वो बहुत फर्क है,
0: सही कह रहे हैं,
1: वो एक अलग ही टॉक है, मैं वहां पे जाना भी नहीं चाहता
0: जी,
1: ओके लेकिन मेरा इतना ही है कि जो जरूरी हो वो जरूर कीजिए
0: जी,
1: जितना हो नॉर्मल रहेगा वही अच्छा रहेगा आपके लिए,
0: बिल्कुल ऑफकोर्स बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब यहां तक आते आते अब आपसे एक ही बात पूछनी है, और वो ये कि पूरे देश और दुनिया में जो लोग हमें सुन रहे हैं, एक बहुत ही अनुभवी आई सर्जन के तौर पर आप क्या बात कहेंगे उन लोगों से, बॉटम लाइन?
1: बॉटम लाइन, एक तो शुक्रिया सुनने के लिए
0: जी
1: काफी टाइम आप लोगों ने झेल लिया मुझे,
0: बहुत तो जरूरी बात है,
1: उसके लिए शुक्रिया। मैं यही कहना चाहता हूं कि आंखें जो हैं वो बहुत ही कीमती हैं, बचपन से लेके अपना साथ देते हैं, मरने तक शरीर का कोई भी आपको हिस्सा साथ नहीं देखे, आंखें आपको जरूर साथ देगी, तो आप कृपा करके बहुत ही सावधानी से इनका ध्यान रखिए, इतनी सुंदर दृष्टि जो प्रकृति है, हम जो भी देखना चाहते हैं वो सिर्फ आंखों के जैसे तो दिखाई दे रहे हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हाँ अगर आप आंख से नहीं देखेंगे तो बाकी और क्या रह गया है,
0: बिल्कुल
1: आप महसूस नहीं करेंगे, टच भी इम्पॉर्टेंट है, फील भी इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर रोशनी नहीं रही तो बहुत ही मुश्किल रहती है, तो बॉटम लाइन यही है कि आंखों की प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ बहुत ख्याल रखिए, इसके साथ खिलवाड़ ना करें, ये मेरा बॉटम लाइन सभी चीज के लिए है कि मेहरबानी करके खिलवाड़ ना करें। किसी ने कर लिया तो मैंने ट्राई कर लिया, प्लीज ना करें
0: जी।
1: सोचिए इसके बारे में, हम सभी चीज के बारे में 10 चीजें सोचते हैं, कोई भी चीज के बारे में हम तुरंत गूगल कर लेंगे, ये कर लेंगे, देख लेंगे, फिर आंख में कुछ डालने के पहले सोचिए ना कि मुझे जरूरी है या नहीं।
0: क्या
1: कि किसी ने कह दिया कि मैंने डाल दिया मेरा नंबर निकल गया, मैंने ये डाल दिया तो ये हो गया, ऐसे होता नहीं है कोई शॉर्टकट। वापस बॉटम लाइन आप जानना चाहते हैं, देयर आर नो शॉर्टकट्स इन लाइफ,
0: नो शॉर्टकट्स इन लाइफ, बहुत सही ये बहुत है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और

0: इतने विस्तार से आंखों की देखभाल के बारे में, आंखों की बीमारियों के बारे में आपने बातें की,
1: शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई एम, क्या कहता हूँ, सॉरी ये हिंदी में शायद शब्द ना, बट आई एम ओवरवेल्म्ड एंड ऑनर्ड के आपने मुझे बुलाया और इतने लोगों तक हम पहुंच सकते हैं और इस जगह पे बुलाया जहाँ पे पता नहीं कौन कौन दिग्गज आके गए हैं। तो इन अ वे जीवन सार्थक है मेरे लिए ये। तो शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सर।
1: थैंक यू।
2: सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

रंग तिरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। कलाम मिर्जा गालिब, विनोद सहगल, मौसिकार जगजीत सिंह,

चित्रा सिंह की आवाज में आपने ये गीत सुना। रंग तरंग कार्यक्रम में हम आपको कुछ गीत गजल नगमे सुनवा रहे हैं और अब दिनेश ठाकुर की रचना, अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाजें।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
2: एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए
0: विविध भारती से रंग तरंग। गुलजार के बोल उस्ताद अमजद अली खां की तर्ज है वादा एल्बम का नाम, साधना सरगम की आवाज़।

मोहब्बत पलकों पे कितने हसीन ख्वाब सजाती है, फूलों से महकते ख्वाब, सितारों से जगमगाते ख्वाब, शबनम से बरसते ख्वाब। फिर कभी यूं भी होता है कि पलकों की डालियों से ख्वाबों के सारे परिंदे उड़ जाते हैं और आँखें हैरान सी रह जाती हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाए।
0: पर्वती खान की आवाज एल्बम का नाम है मिसिंग यू। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा की बैठक दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठा दिया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
1: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में आज बैंकरों के बही खातों का साक्ष्य विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल ये विधेयक पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य बैंकरों के बही खातों से संबंधित साक्ष्यों के लिए कानून बनाना और इसे समकालीन डिजिटल बैंकिंग कार्यप्रणालियों के अनुरूप बनाना है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 तथा विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 भी पेश करेंगी। इस बीच राज्यसभा में आज जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस विधेयक को पेश करेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीतिक आग्रह के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण और ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किए जाने को दूसरा चरण बताया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओकावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। महिला डबल्स में प्रिया कोन जेंगबांग और श्रुति मिश्रा तथा पुरुष डबल्स में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय आज कोर्ट में उतरेंगे। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे यादों की महफिल।

आइए सुने यादों की महफिल। किशोर कुमार का दिन और इस कार्यक्रम में किशोर के कुछ उदास नगमे।

शैलेंद्र के बोल, किशोर कुमार की आवाज, उन्हीं का संगीत, फिल्म का नाम दूर गगन की छांव में, किशोर कुमार की उदास कहानी, यादों की महफिल।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे वो गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: अमर प्रेम फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में था। आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट की। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

आनंद बख्शी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। मजबूर फिल्म का ये गाना था किशोर कुमार के उदास नगमे विविध भारती के कार्यक्रम में यादों की महफिल। इस बार मदन मोहन की तर्ज किशोर कुमार की आवाज। फिल्म का नाम एक मुट्ठी आसमान।

कितने रंग हैं, किशोर कुमार की आवाज के एक रंग उदासी का भी है। किशोर कुमार को हमेशा मस्ती से, ऊधम से, शरारत से और कॉमिक अंदाज से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन जिंदगी का एक जरूरी रंग उदासी है और यहां किशोर कुमार खूब खिलते हैं। अनजान और प्रकाश मेहरा के बोल।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। इस कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सुरीला सफर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य इस मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति रही। सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने सदन के पटल पर दस्तावेज रखे। आवासन और शहरी मामलों से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। राष्ट्रीय लोकदल के सांसद चंदन चौहान ने कहा कि गठबंधन सहयोगियों के बीच मंगल मिलन जैसी बातचीत समन्वय और संवाद को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। श्री चौहान ने बताया कि बैठक के दौरान नेताओं ने ग्लासगो में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारत के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं को बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के मंगल मिलन बैठक में 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।

0: तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि ने विवादास्पद बयान दिया था। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी और अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने युवा खिलाड़ियों को निरंतर सफलता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने खिलाड़ियों को एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028 की तैयारियों के लिए शुभकामनाएं दी। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। पुरुष सिंगल्स में भारत के तुषार सुवीर जापान के शोगो ओगावा से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा भारत की अगुवाई करेंगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज चहलुम जुलूस को देखते हुए दक्षिण दिल्ली में विशेष यातायात व्यवस्था और मार्ग परिवर्तित किए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि दोपहर 2 बजे से अरबिंदो मार्ग, लोधी रोड, रिंग रोड, बीपी मार्ग और उनसे जुड़ी सड़कों पर यातायात जाम होने की आशंका है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: देख भाई इधर आ, खाली है पिंजरा। नहीं देख भाई इधर आ, अरे खाली है पिंजरा, पिंजरे के अंदर।
2: कौन कौन बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: अंदर निकलेगा बंदर, यही परिचय है राजा जानी का। बोलो मसाल जवानी दीवानी का।
2: क्या बात है किशोर कुमार की। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उनके लाइव कॉन्सर्ट्स देखे हैं सचमुच में या फिर वीडियो पर, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मस्ती किस तरह की होती थी। लेकिन किशोर कुमार एक बहुत संजीदा आदमी भी थे। किशोर कुमार को सेलिब्रेट करना इसलिए मुश्किल है कि आप किस तरह से उन्हें सेलिब्रेट करेंगे। इतना बड़ा, इतना ज्यादा विस्तृत करियर क्या सुनाएं और क्या नहीं सुनाएं। इसीलिए हमने आज चुना है किशोर कुमार की मस्ती को। लेकिन सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किशोर कुमार के किस अंदाज के गाने आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। उनके रूमानी गाने, उनके उदास गाने, ऐसे गाने जिनमें जिंदगी का दर्शन है, या ऐसे गाने जो हमने आज चुने हैं बहुत ही ज्यादा धमाकेदार, बहुत ही ज्यादा मस्ती भरे, बल्कि कहें कि ऊधम भरे गाने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए जरा चलते हैं टिम्बकटू और काठमांडू।
3: गौरी जरा बती या सुनो जी मोरी मोरी।
2: आप सभी को किशोर कुमार के अपने पसंदीदा 3 गानों की लिस्ट बनाकर हमें भेजनी है।
3: चोरी चोरी चोरी।
2: जरा देखते हैं कि आपकी पसंद के किशोर के 3 फेवरेट्स कौन से हैं।
3: काकरी माकरी, आकरी माकरी, काकरी माकरी, आकरी माकरी।

0: जब चली ओ गोरी गोरी कली, मैं आया तेरी गली, कोई क्या करेगा गा गा के गे गे गे ली जरा टिम्बकटू।
1: काठमांडू काठमांडू गले हूँ
0: मैं हूँ लोहा चुंबक तू,
1: कैसे भला बच बच के रहूँ
0: गे गे गे गे ली जरा।

0: गिराना पलक न गिराना तू जरा सा उठाना आंखों का पर्दा दादा
1: टिमक टू
0: चुम्बक तू
1: भला
0: गे गे गे गे लीजा

क्या आपको ये अंदाजा लग सकता है कि ये गाना 65 बरस पुराना है, 65 साल पुराना? और किशोर के गानों को सुनते हुए ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि गीतकारों के लिए वो कितनी बड़ी चुनौती बन जाते थे, उनके लिए गाना कैसे लिखा जाता होगा। गिगे गिगेली जरा टिम्बकटू मजरू सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गाना है। बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं और मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स यहां पर मैं पढ़ दूं। तीन पसंदीदा गानों की जो बात हमने कही थी, तो एक श्रोता है उनके तीन पसंदीदा गाने खिलते हैं गुल यहां, फूलों के रंग से और मेरे महबूब कयामत होगी। बहुत सारे श्रोताओं की कमेंट्स और इतनी तेजी से स्क्रॉल हो रहा है हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन के इन गानों को पढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। जिंदगी के सफर में गुजर जाती है, मंजिलें अपनी जगह हैं। और तीसरा गाना उड़ गया, कहाँ गया ये, आ चल के तुझे लेके चलूँ। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बहुत ही कठिन प्रश्न है क्योंकि किशोर कुमार के कौन कौन से रंग पसंद हैं, हमें तो सारे रंग पसंद हैं। एक और श्रोता, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, रुक जाना ओ जाना और फूलों के रंग से, ये उनके फेवरेट हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें अपनी जगह हैं और सलाम इश्क, ये किसी और श्रोता के फेवरेट्स हैं। और इसके अलावा और भी चीज़ों के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं। एक श्रोता ने कहा है कि भाई कहते हैं मुझको राजा फिल्म का गाना था, बढ़ के बोल बेटा बम बम, मजरू सुल्तानपुरी ने वो गाना लिखा था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा कि कहानी किस्मत की फिल्म के गाने से आपने कार्यक्रम को शुरू किया था। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी पसंद के तीन गाने, कुछ तो लोग कहेंगे पायल वाली देखना और जीवन से भरी तेरी आँखें। बहुत सारे श्रोताओं की बातें और किशोर कुमार के बारे में जब लोग अपने जज्बात शेयर करते हैं और अपनी बातें शेयर करते हैं, तो ये लगता है कि कितना प्यार इस कलाकार से हम सभी को है जो हम फिल्म संगीत को प्यार करते हैं। अब एक गाना आ रहा है जो बिल्कुल बीच से आ रहा है, यानी इस गाने का सबसे ज्यादा फनी पोर्शन हम आपको सुनवा रहे हैं। आपको दो बातें बतानी है, एक तो फिल्म का नाम और दूसरा गीतकार का नाम। ऐसा हुड़दंगा गाना आखिर किसने लिखा? जय गोविंदम, जय गोपालम, जय गोविंदम।

0: धर्मेंद्र जय जय जय हो जय राजेंद्र
1: गोविंदम जय गोपालम जय गोविंदम जय गोपालम
0: जगत नारायण के छोड़ के संतो

0: ಆಚೆ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್
1: ज़रा सोचिए कि जब गानों की लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती होगी तो कैसे म्यूजिशियंस और कोरस और किशोरदा के साथ के सिंगर सारा तालमेल बैठाते होंगे और इस हुड़दंग के बीच अपने हिस्से की अदाकारी करते होंगे। क्या कमाल है। एक और श्रोता है जिन्होंने अपने तीन पसंदीदा गाने लिखे, मेरे दुख सुख का संसार, तेरे दो नैनन में, लहरों से पूछ लो और हरे कृष्ण, नया दिन नई रात, काफिला और फरेब फिल्म के गाने, बहुत ही अनमोल गाने इन्होंने बताए। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार के गानों में बहुत सारी मस्ती सुनने को मिलती है, उनकी यूडलिंग कमाल की है और इसीलिए उन्हें सारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, वो शाम कुछ अजीब थी और कश्ती का खामोश सफर, ये हमारे एक श्रोता के तीन पसंदीदा गाने। एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि जिस तरह से वो संजीदा गीत गाते थे, लगभग उसी सुरूर में वो शोख गीतों की कलियां चटकाते रहे हैं। आंसू और मुस्कान फिल्म का गाना भी हमने आपको सुनवाया, कमर जलालाबादी ने इस गाने को लिखा, जय गोविंदम जय गोपालम, पीछे पड़ गया इनकम टैक्सम। ये जो बोल है कमाल, मतलब आप ये जरा ये सोचिए कि सामान्य गीतकारी में इनकी गुंजाइश कहाँ है, लेकिन किशोर कुमार गानों में जो गुंजाइश निकालते हैं वो अद्भुत है। जैसे कि ये गाना, आज अगर किशोर कुमार होते तो पहली बात आप उनसे क्या कहते, बताइए।

0: का
1: आप कदम पर स्थान रही मैडम
0: कदम कदम पर धोती वाले मोटी तोंदों वाले लाले क्रिसमस में जापान चलेंगे नहीं तो इंग्लिश था

एक श्रोता ये लिखते हैं कि अगर आज किशोर कुमार होते तो उनके सामने बैठकर उनके गाए हुए उनके कुछ गाने सुनती। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि फिल्म जगत में जो योगदान है उसके लिए हम हमेशा किशोर कुमार के ऋणी रहेंगे। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार होते तो हम उनसे एक चतुरनार, पाँच रुपया, बारह आना जैसे गाने सुनते। और इसके अलावा एक और श्रोता ने जो बात कही है कि आज के तमाम हीरोज के गाने वही गा रहे होते और सबसे ज्यादा गाने उनके नाम पर होते आज अगर किशोर कुमार होते। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये कहा है कि बहुत ही अनसुना गीत आपने बजाया। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि अगर आज किशोर कुमार होते तो ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार के सभी गाने वही गा रहे होते। और एक और श्रोता कहते हैं कि हम तो भाई उन्हें साष्टांग प्रणाम करते आज अगर होते। एक और श्रोता है जिनका कहना है कि हम उनसे कहते हैं कि आप अपनी यूडलिंग हमें सुनवा सिखा दीजिए। और फिर एक और श्रोता है जो कहते हैं कि आज अगर किशोर कुमार हमारे सामने होते तो हम सैल्यूट करते, चरण स्पर्श करते, कितने लोगों के कितने जज्बात। एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर मरते नहीं, किशोर सबके दिलों में जिंदा हैं। किशोर कुमार को समर्पित ये आज का कार्यक्रम सुरीला सफर सीधे रास्ते पर नहीं जा रहा है। आज का जो कार्यक्रम है ये बिल्कुल वैसा है जैसी किशोर कुमार की मस्ती, जैसे किशोर कुमार का हुड़दंग। यानी ऐसे गाने जिन्हें सुनकर आप रह जाएं हक्का।

0: ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता। अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का।
1: किस फिल्म का है ये गाना ये बताइए।
0: चाहे हम चाहे तुम कल की है खबर किसको। चाहे हम चाहे तुम कल की है खबर किसको। समझे ये हवा मिली ऐसी नजर किसको। बूम धाम बड़ा बड़ा बूम। आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का। ए भी हक्का हक्का पक्का दुनिया पागल।

कदम चूमे। अरे दूर फिटे मुँह चलते जाना, देखे धक्का आई आधी टूटा पत्ता, डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का हक्का पक्का, दुनिया पागल है अलबत्ता, है डाली टूटी फल है कच्चा, बाग लगाया पक्का, ए भी हक्का। मैं हूँ इंसान, वो है कुत्ता।

सुन ओ सोनिया मैं हूँ इंसान वो है कुत्ता कहता हूँ पते की सुन वो भी काटे मैं भी काटूं यहाँ सबको है अपनी धुन अरे भागो बंबई से कलकत्ता चलते जाना दे के धक्का आई आधी टूटा पत्ता डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पका ए भी हक्का हक्का बक्का दुनिया पागल है अलबत्ता अरे डाली टूटी फल है कच्चा बाग लगाया पक्का ए भी हक्का हक्का बक्का।

0: भाई इस गाने को सुनकर क्या कहेंगे आप। मजरूह सुल्तानपुरी के ये बोल हैं, कितने सारे श्रोताओं ने अपनी बात कही है और अपने जज्बात का इजहार भी किया है। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि उनके फेवरेट गाने हैं एक लड़की भीगी बागी सी, अजनबी तुम जाने पहचाने से लगते और कश्ती का खामोश सफर। एक श्रोता और हैं जिन्हें बिंदु रे बिंदु गाना बहुत पसंद है, ये जो गाना हमने आपको सुनवाया इसके बारे में भी कई श्रोताओं ने अपनी बात कही है। और इसके अलावा किशोर कुमार के गायन में मनोरंजन ही नहीं करते, अपनी आवाज़ के जादू से हम सब के दिलों में जगह बना लेते हैं, ये किसी ने कहा है। वो दुनिया से ज़रूर विदा हो गए मगर उनके गीतों को क्या हम अपने दिल से विदा कर सकते हैं, ये भी एक बात। और इसके अलावा एक और श्रोता लिखती हैं कि किशोर दा के सामने मौजूद होना ये किसी भी कला प्रेमी के लिए जीवन का सबसे बड़ा और जादुई पल हो सकता है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं, लहरों की तरह यादें, मेरा जीवन कुछ काम ना आया, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, ये तमाम गाने। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि खंडवा में हम उनके घर उनके समाधि स्थल तक गए और इन जगहों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें मिला है। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर दा अगर आज होते तो खंडवा में दूध जलेबी का आनंद जरूर लेते। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अपने घर को लेकर उनका अपना एक अलग सपना था जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने घर में एक आर्किटेक्ट को बुलाया और कहा कि मेरा एक ऐसा घर बनाओ जिसके हर कमरे में पानी हो और पूरे घर में नाव चलाकर एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाएं। आर्किटेक्ट भाग खड़ा हुआ। ये घटना जो है ये बहुत ही दिलचस्प है, पर आज के इस कार्यक्रम में ना जगह है ना सही समय है इसे बताने का। दरअसल उन्होंने उस आर्किटेक्ट से एक तरह का बदला लिया था, उसे सताया था। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। और किशोर दा एक सलाह दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना। अब आप लोग विविध भारतीय फेसबुक पेज पर जाकर बताइए कि ये सलाह सही है या नहीं है।
1: कुएं में ठंडा जल में नहाने से गला ठोचरा बैठ गया।

देखी दिल्ली की एक लड़की, जिसको देख तबीयत भड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर आग सी भड़की।

0: पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगें लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। जाते ही झुके सलाम बजाया डैडी को, दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले।
1: हाँ जी अच्छा ख्याल है आपका दीजिए, मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका।
2: हाँ,

0: कोई बता सकता है कि ये किस फिल्म का गाना है?
1: कहने लगा
2: ये मुंह और मसूर की दाल पे निकल जा निकल जा निकल जा यहाँ से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था अक्सर भारी, उसका

0: मिस खंबा बम्पी बम्पी बम्पी बम कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ दिल फेल हुआ हाय हाय रे
1: बबलू बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू बबलू बबलू बाबा बबलू
0: होनोलुलू
2: कहाँ से पहुंचे और कहाँ चले गए हुनू लुलू कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना परिवार फिल्म का ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। शैलेंद्र का ये गीत और सलील चौधरी का संगीत, इस गाने के बोल एक कागज पर लिखकर देखिए और जरा सोचिए कि कैसे लिखे गए होंगे ये गाने और कैसे इनकी रिकॉर्डिंग की गई होगी। 1956 में आई थी ये फिल्म और बिमल रॉय की ये फिल्म थी और बिमल रॉय निर्मित इस फिल्म में किशोर कुमार का स्पेशल अपीयरेंस था, ये भी हमारे कुछ श्रोताओं में से किसी एक ने कहा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोरदा किस तरह से किसी भी गाने को मज़ेदार बना देते हैं कि सुनकर बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि 50-60 साल पहले लड़कियों के लिए अगर शादी ना करनी होती तो भी करनी पड़ती थी, आज की बात कुछ अलग है। एक श्रोता है जिन्होंने सारी बात को समअप कर दिया है कि शादी वो लड्डू है जो खाए पछताए जो ना खाए पछताए, इसलिए शादी करना ही बेहतर है, ये उनका विचार है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि किशोर कुमार को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा के सबसे बहुमुखी और प्रभावशाली कलाकारों में से एक वो माने जाते हैं। एक और श्रोता का कहना यह है कि उनके 3 पसंदीदा गानों को सिलेक्ट करना जरा मुश्किल है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि बहुत ही अनोखा कॉम्बिनेशन आज आपने किया है, पहले तो उदास गाने बजाए और उसके बाद ऐसे मस्ती भरे गाने लगाए कि एक श्रोता कह रही है कि ऐसे गीत लाए हैं जो आज हमने इनमें

अब जरा ये गाना सुनिए और बताइए रुपहले पर्दे पर इस गाने में कौन कौन नजर आते हैं और किशोर कुमार इस गाने में किसकी बैंड बजा रहे हैं।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय नटखट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सांवरिया।

पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना, हम मीठे बहना तोरे नैना, हाय हाय

0: गुजरिया ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया
0: ओ गुजरिया
1: ओ सवरिया।
2: भाई खत्म हुआ ये हुड़दंगा गाना, हाफ टिकट फिल्म का गाना शैलेंद्र के बोल। और एक श्रोता है जिन्होंने ये लिखा है कि मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, इस तरह से ना करें क्षेत्रवाद। वो कह रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग ही ऐसा हुड़दंगा कार्यक्रम कर सकते हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं फिल्म हाफ टिकट शैलेंद्र जी के बोल हैं। और हाँ एक चीज़ आपसे कहनी है कि कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने जोश जोश में सखी सहेली वाली या आज शाम के 4 बजे पिटारा वाले कार्यक्रम में जाके अपने कमेंट कर दिए और किशोर कुमार के फेवरेट गाने वहाँ चिपका दिए। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने जाके वहाँ पर आपके कमेंट्स देखे तो मुझे लगा ये कुछ कमेंट्स वहाँ पर क्यों हैं। तो एक श्रोता लिख रहे हैं कि भाई इस गाने में किशोर कुमार प्राण की बैंड बजाते हैं, क्या तो शानदार मुकाबला है दोनों महान कलाकारों का इस गाने में। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि किशोर कुमार की बहुमुखी प्रतिभा का शानदार उदाहरण है और किशोर कुमार ने ही महिला और पुरुष स्वर में भी गाया है और प्राण के स्वर में भी गाया है। और इसके अलावा और भी तमाम श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं लेकिन आज गाने भी ज़्यादा हैं और आप सभी के जज्बात जिस तरह से आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हौसला बढ़ाने की भी बात है। और ये भी कि किशोर कुमार के प्रति जो आपका प्रेम है वो कितना ज़्यादा है। अब एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि पहले हास्य गीतों का एक कार्यक्रम आया करता था विविध भारती पर, आज के इस कार्यक्रम ने उसकी याद दिला दी है। इसके अलावा एक श्रोता का कहना है कि जब वो हास्य गीत गाते थे तो लगता था उन्होंने गाने को किसी धागे की तरह उलझा दिया है और यही धागा उलझाना उनकी विशेषता थी। अब दो गाने बैक टू बैक आएंगे, बल्कि गानों के अंश बैक टू बैक आएंगे, आपको इनकी फिल्मों के नाम बताना है।

0: भाई बैक टू बैक दो गाने हमने आपको सुनवाए और सभी श्रोताओं ने अपने इन बातों के जवाब दिए। चलती का नाम गाड़ी और पड़ोसन फिल्म के ये गाने हैं। और चलती का नाम गाड़ी के गाने के बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि क्या तो एक्सप्रेशन है, मधुबाला के लिए गा रहे हैं पर लगा ऐसा जैसे उनके लिए उन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है। क्या तो शानदार फिल्म है चलती का नाम गाड़ी, कितने बार आपने देखी है ज़रा बताइएगा तो हम ये अंदाज़ा लगा पाएं कि चलती का नाम गाड़ी हमारे आज सुन रहे श्रोताओं में सबसे ज़्यादा कि बार किसने देखी है। एक तो ये बात हो गई और दूसरी बात ये है कि आज जो मैंने इबारत लिखी थी किशोर कुमार के हुड़दंगे गानों के बारे में, क्या कोई गिनकर बता सकता है कि उस पूरी इबारत में कुल कितने गाने समाए हुए हैं? और अब किशोर कुमार का ये बेतहाशा हुड़दंगा गाना, फिल्म का नाम आपको है बताना।
1: निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, हाय अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई।

कल चांद और तारों में पहुंचेगा एटमी घोड़ा। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, निकल के आघर से, आघर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, देख ले फिर से, अरे भाई निकल

0: अरे कल जो था कल रहा होगा, आगे की सोच क्या होगा। टूटी पुरानी ढपली पे तू कल का मरसिया मत गा। अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, अरे भाई निकल के आ घर से।
1: क्या तो शानदार गाना है, नई दिल्ली फिल्म का ये गाना। भाई आज की इबारत पढ़िए और जल्दी से हिसाब लगाकर बताइए कि आज की इबारत में मैंने जो शब्द लिखे हैं, गानों को जोड़कर जो इबारत बनाई है, उसमें गानों की कुल संख्या कितनी है, जरा हम देखें तो कि आप लोग सही सही अंदाजा लगा पाते हैं या नहीं, क्योंकि शब्द शब्द पर गाने समाये हुए हैं। तो कुछ श्रोताओं के जवाब आए हैं, कुल 13 गीत हैं जो कि गलत जवाब है, एक और हैं जिन्होंने 14 गीत लिखा है वो भी गलत जवाब है। तो जरा ध्यान से पढ़िए और आज का ये कार्यक्रम, एक कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा तो खत्म हो चुका है। तो एक और श्रोता है जिन्हें 16 गाने इस गाने की इबारत से मिले हैं, तो बहुत करीब पहुंच चुकी हैं वो। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भाई घर से बाहर तो आज नहीं निकल सकते क्योंकि आज हम सुरीला सफर सुन रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जो ये कहते हैं कि हम तो अभी घर पर ही हैं, निकलेंगे तो रौनक देख लेंगे, घनश्याम भाई का नाम भी है इस गाने में। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि न्यू दिल्ली फिल्म का ये गाना शंकर जयकिशन का संगीत है। एक और श्रोता है जो देर से जुड़े हैं लेकिन इस कार्यक्रम में उनको बिल्कुल मजा ही आ गया है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि बारिश भी ऐसा ही कह रही है कि भाई अरे भाई निकल के आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से। तो ये किशोर कुमार का जादू है। और अब जो गाना आ रहा है वो किचन में खाना पकाते हुए फिल्माया गया गाना है, और आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि किचन में खाना पकाते हुए सबसे बड़ा ब्लंडर आपने जो किया था वो क्या था और कब किया था, क्या पका रहे थे आप?
2: फूंक फूंक कर चूल्हा

ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये और वो और घर तेरे की। पर सब दिन हो तन एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज

हजार दिन होंगे गरीबी के जिस दिन खलास गरम गरम गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी गरम गरम कचौरी पूरी खूब तलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी बड़ी दुनिया जो देखेगी है, है, है बड़ी

भाई बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं और इस तेजी के साथ स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है कि समझ नहीं आ रहा किसने क्या लिखा है। एक श्रोता है जो ये कहते हैं क्यों ना रोटियों का हम पेड़ लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें। वाह भाई वाह वाह वाह वाह। यहाँ मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछना चाहिए कि जो शैलेंद्र के बोल कोट किए हैं इन्होंने, क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें, रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, ये किशोर कुमार का गाया हुआ एक गाना है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये कौन सा गाना है? जिन्होंने पोस्ट किया वो प्लीज मत बताइएगा। एक और श्रोताएं जो कहती हैं कि 19 गाने हैं आज की इस इबारत में, एक श्रोताएं जो कहती हैं कि आज की इबारत में 20 गाने हैं, एक श्रोता नाराज हैं कि सुरीला सफर की पोस्ट आते ही अपने विचार व्यक्त करता हूं पर आपको अपने सवालों में ही दिलचस्पी रहती है, शायद इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करके हमने गलती कर दी है। भाई आपका कमेंट दिखानी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं के कमेंट्स शामिल करने की कोशिश करते हैं और देखिए कि लगातार कमेंट्स पढ़ रहे हैं गानों के बीच में। ये कमेंट दिखा और फौरन पढ़ा, एक श्रोता है जिन्होंने गाजर का हलवा बनाया और दूध की बजाय चावल पता नहीं क्या उन्होंने जोड़ दिया और हलवे की बैंड बज गई। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रही हैं कि उन्होंने चाय में नमक डाल दी थी और मेहमानों को परोस भी दी थी। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रही हैं कि कुछ कुकर में खिचड़ी बन रही थी, गैस चूल्हे पर रखकर भूल गया, उसका ढक्कन उड़ा, खिचड़ी जाकर दीवारों और छत पर लग गई, हे भगवान। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि पहली बार जब आटा गूंधा तो ढेर सारा पानी डाल दिया था और एक ही बार में वो गीला हो गया था। एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि इस गाने के साथ मेरा भी एक किस्सा है। वैसे तो कभी कभी पापा छुट्टी के दिन खाना बना देते थे और उस दिन यही गाना गाते थे, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा कि हमारी दाल तो गल गई है और अब हम रोटी पका रहे हैं, वही वाह। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने कहा है कि भाई 18 गाने आज के इस कार्यक्रम में, आज की इस इबारत में हैं और ये जो किचन के ब्लंडर्स हैं ये पढ़कर बड़ा ही मज़ा आ गया। बल्कि एक और मज़ेदार किस्सा ये हुआ है कि के मुंगोचो घनश्याम जी, इस तरह की जो पंक्ति है अरे भाई निकल क्या घर से वाले गाने में, तो बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिनका नाम घनश्याम है, उनको बड़ा मज़ा आ गया आज के कार्यक्रम में इस गाने की इस लाइन को सुनकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और किशोर का एक और हुड़दंगा गाना सुनते हैं। फिल्म का नाम आप बताएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि आज इतने सारे हुड़दंगे गाने जो हमने बजाए उसमें से आपका पसंदीदा कौन सा गाना था, और अगर कोई भयंकर हुड़दंगा गाना हमने मिस कर दिया तो वो भी बता दीजिए।

उल्हा क्यों ना रोटियों का पेड़ हम लगा लें, आम तोड़ें रोटी तोड़ें, रोटी आम खा लें, काहे कले लोज लोज तू ये झमेला। अम्मी को आई हंसी, हंस के वो कहने लगी, लाल मेहनत के बिना रोटी किसके घर पर पकी। ये है जादू गीतकारी का, ये है जादू शैलेंद्र का। किशोर कुमार का एक बहुत ही प्यारा गाना और उसकी बहुत प्यारी पंक्ति। शुक्रिया जिस भी किसी श्रोता ने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि भाई चलते चलते ये ज़रूर बता दीजिएगा कि कुल कितने गानों से आपने इबारत सजाई थी। बहुत सारे श्रोता अलग अलग आंकड़े लिख रहे हैं, तो मैं कहूँगा तकरीबन 18 गाने तो मुझे ही नज़र आए थे, और आप लोग ढूंढ लीजिएगा क्योंकि अलग अलग शब्दों से भी गाने सज जाते हैं। तो बहुत सारे श्रोताओं को आनंद आ रहा है, और खाना पकाते हुए दाल गलेगी जैसे गाने सुनते हुए किसी के दाल चावल बन गए, किसी की रोटी और किसी की हैदराबादी बिरयानी। और कार्यक्रम का आखिरी गाना, फिल्म का नाम बताइएगा, और साथ में देखिए संगीतकार भी यहां बदल जाते हैं, और ये भी कि इस गाने के जरिए दुनिया को देखने की नई नजर आपको मिलेगी।

ये वक्त ये जमाना जब ना लगे सुहाना फिर मेरे पास आना, खादिम हूँ मैं पुराना, रखता जो कुछ नजर है।

दुश्मन जिसे सताए जिसको लगा के जाए जाके नजर मिलाए धोखा कभी न खाए बूढ़ा हो या हो बच्चा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी। होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओसी के नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। जीरो आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: MSMEs have actually benefited.
5: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
6: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
7: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी

0: जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
1: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। ये समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ओडिशा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। आईएमडी ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने पथनामथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज दलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: इस कार्यक्रम में सबसे पहले फरेब फिल्म का गाना मजरू सुल्तानपुरी के बोल अनिल बिस्वास की तर्ज है।

विविध भारती से आप सुन रही हैं सदाबहार नगमे। अगला गाना फिल्म जालसाज से है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज, किशोर कुमार के साथ आशा भोसले।

कार्यक्रम की आखिरी पेशकश मन मंदिर फिल्म का गाना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, गीत राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ये था आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और मेरे सामने हंसती मुस्कुराती सी प्यारी सी हमारी सखी बैठी है
2: आरती श्रीवास्तव। तो सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
1: कैसी हो?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: लग रही हो?
2: जी
1: बिल्कुल। सावन का महीना लग गया है और वो जो चेहरे पर चमक आ जानी चाहिए इस मौसम में वो तुम्हारे चेहरे पर भी दिख रही है।
2: बिल्कुल। और जो शहर है वहाँ पे तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम गांव वगैरह में जाएं तो वहाँ पे सावन के साथ में झूले जुड़े होते हैं, साथ में मेहंदी जुड़ी होती है, बहुत सारी चीजें श्रृंगार की जुड़ी होती है महिलाओं के।
1: हाँ, क्योंकि महानगरीय जो व्यवस्था है उसमें आदमी सुबह निकलता है और शाम को आता है, उसे शायद पता ही नहीं चल पाता कि प्रकृति उससे क्या कह रही है ना। लेकिन छोटे शहरों में, गांवों में, ढाणियों में, खलिहानों में, वहां इस बात का भरपूर आनंद उठाया जाता है कि भई श्रावण मास आ गया है या कोई नया महीना आ गया है और उस माह में क्या क्या किया जाना चाहिए। तो अब सावन की जब रुत आ गई है तो लोगों के चेहरों पर हंसी आ गई है। आपने जैसा कि कहा झूले झूलने के दिन आ गए हैं और मेहंदी तो वैसे कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन इस श्रावणी तीज पर खासतौर से जब मेहंदी लगाई जाती है और रक्षाबंधन का जब त्योहार आता है इस माह में, तो सोचिए कितना प्यारा समय होता है, वो उत्सव का समय कितना खास होता है।
2: बिल्कुल। ये जो सावन का महीना होता है ना, पूरा उत्सव से ही भरा होता है।
1: हाँ।
2: बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई जाती हैं, खाए जाते हैं पकवान अच्छे से अच्छे, और साथ ही जो मन होता है ना एकदम प्रफुल्लित हो जाता है, क्योंकि हर तरफ हरियाली होती है, पानी बरसने की वजह से हर छोटी छोटी जो जहाँ पे झाड़ियां जो एकदम सूख गई होती है वो भी एकदम हरी भरी हो जाती है, और साथ ही जो खासकर जो महिलाएं वगैरह है वो इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है।
1: हाँ,
2: तरह तरह की उनके कार्यक्रम होते रहते हैं कि आज ऐसे हमें करना है, इस तरह से मनाना है।
1: और पता है इस मौसम में मन का रेगिस्तान भी हरा हो जाता है और दो प्रेमी दिल भी जवान हो जाते हैं।
2: जी बिल्कुल। और सावन की खासियत यही है कि आपको हरा भरा कर देता है।
1: बिल्कुल। तो आज के विषय बता दें ताकि हम सावन का आनंद थोड़ा सा और उठा लें।
2: बिल्कुल। आज हम लेके आए हैं

0: आज हम बात करेंगे अफवाहों से रहें सावधान, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अफवाहों की वजह से
1: संबंध
0: जो
1: खराब हो
0: बिल्कुल
1: जाते
0: और जो
1: हैं,
0: शांतिपूर्ण माहौल होता है ना वो बिगड़ जाता है।
1: बिल्कुल, और संबंध भी खराब हो जाते हैं जब
0: बिल्कुल
1: आप किसी की अफवाह उड़ाते हैं और आपको पता चलता है कि भाई आरती ने मेरे बारे में ये बात कह दी है और वो अफवाह
0: हाँ
1: है, तो मेरा
0: जी
1: तुमसे संबंध खराब होना लाजिमी
0: बिल्कुल
1: है ना। तो ये सब चीजें भी होती हैं, इसलिए अफवाहों से हमेशा रहें। और कान के कच्चे कहावत है, उसका भरपूर प्रयोग करना चाहिए कि कान के कच्चे कभी ना हो। आपसे
0: बिल्कुल
1: किसी ने कोई बात कही या आप तक कोई बात पहुंची, तो उसके लिए आप उन लोगों से बात करें कि
0: बिल्कुल
1: क्या ऐसा कुछ कहा गया, ऐसा कुछ बात हुई है जो इस तरह से माहौल को बदल रही
0: बिल्कुल
1: है।
0: उसकी आप जांचें, उसे
1: हाँ,
0: जांचें
1: परखिए।
0: परखें। और साथ ही अगर बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि कोई कभी कभी होता है ना कि सोशल मीडिया पे हम कोई चीज़ मैसेज को फॉरवर्ड करते हैं, तो ये सब करते समय हमें बहुत ध्यान रखना
1: सावधान
0: चाहिए,
1: रखना पड़ता
0: क्योंकि
1: है।
0: ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो
1: बिल्कुल
0: सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: और आज हम वैसे बात करेंगे मुहावरों के लिए, मुहावरों की दुनिया में आज हम बात करेंगे एक से 21 होना।
1: अरे, 1 से 11 होना तो हमने सुना
0: हाँ,
1: है,
0: ये अलग
1: लेकिन एक
0: है।
1: से 21 होना और भी बड़ी बात है।
0: बिल्कुल
1: तो चलिए, इस पर ये हमारे श्रोता, हमारी सखी और सखा इस पर विचार भेजेंगे
0: बिल्कुल,
1: अपने,
0: वो अपने विचार भेजें कि वो इस मुहावरे को किस तरह से समझते
1: देखते
0: हैं।
1: हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही वो किस तरह से इसको अपने जीवन में उतारते हैं, वो क्या समझते हैं इस चीज़ से, इस मुहावरे से। और साथ ही हम बात करेंगे हल्की फुल्की बातें के अंतर्गत बचपन की जो यादगार हमारी शरारत होती है। वैसे तो बचपन ही यादगार रहता है पूरा, लेकिन कुछ शरारतें ऐसी होती हैं ना
1: जो
0: जो
1: याद
0: हमें
1: रह
0: बिल्कुल
1: जाती
0: याद रह
1: हैं।
0: जाती हैं, तो उसके
1: और
0: बारे
1: कई
0: में बात
1: बार
0: करेंगे।
1: हमारे माता पिता भी बताते हैं कि पता है, जब भी छोटी थी, ये जब छोटा था तो बचपन में ऐसे करता था, इसने ऐसे कर दिया, है ना। तो बच्चों
0: जी
1: की बहुत सारी शरारतें हमें याद रह जाती हैं।
0: बिल्कुल, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अपने अपने आप शरारतें हमें बिल्कुल साझा करने में हिचकिचाइए नहीं, क्योंकि हम उसको सबके साथ में बातें करेंगे, हम भी अपनी शरारतें बताएंगे, तो अच्छा लगता है ना एक
1: हाँ,
0: दूसरे के बारे में
1: लेकिन
0: जानना।
1: यहाँ आरती में एक बात कह देना चाहती हूँ श्रोताओं से, हमारी सखियों और सखाओं से, कि वो बचपन की यादगार शरारत पर निबंध नहीं लिखी है ना,
0: हाँ
1: कि भी बचपन में शरारत करते हैं, ये नहीं। आपने
0: जी
1: क्या शरारत की, आपको याद है, या आपके बच्चे क्या शरारत करते हैं,
0: बिल्कुल,
1: ये आप लिख सकते हैं।
0: अपना अपना बचपन या अपने बच्चों का बचपन, आप
1: बचपन,
0: किसी का भी
1: हाँ
0: या अपने पोते पोतियों का
1: हाँ
0: बचपन,
1: या
0: कुछ
1: आपके
0: बता सकते
1: पड़ोस के
0: हैं।
1: बच्चे हैं, या कोई आपके घर में बच्चा आया है, उसकी कोई याद आपको कि वो बच्चा इतना शरारती था और अब देखिए वो बड़ा होकर इतना डिसेंट बन गया है
0: जी
1: ना।
0: बिल्कुल, और आज हम सखी विशेष के अंतर्गत बात करेंगे मल्लिका सदानी जी की, जो संस्थापक हैं मॉम्स कंपनी की, उनके बारे में बात
1: इनके
0: करेंगे।
1: बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अब सावन,
0: को एंजॉय, ओ आनंद
1: हाँ
0: उठाते हैं।
1: हाँ चले करें।
0: बिल्कुल।

0: तो कितना प्यारा गीत, सावन तो आ गया है। और खैर, सावन का इंतजार हम सभी को रहता भी है। और जब मौसम की बात चल रही थी तो हमें लगा कि आरती का जो चेहरा है वो बिल्कुल गुलाबी हो गया था। सावन की फुहारों से बहुत ही खुश नजर आ रही थी। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है आरती कि हम प्रकृति से बहुत खुश होते हैं, प्रकृति के माहौल में रमे होते हैं, लेकिन अचानक कई बार हमें लगता है कि कुछ ऐसी बातें जिंदगी में हमने सुन ली हैं या कुछ ऐसी बातों से घिर गए हैं जो सच नहीं होती हैं, झूठ के करीब होती हैं, जिन्हें हम अफवाह का नाम भी दे सकते हैं
1: जी।
0: तो, और हम दुखी भी हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: कि अरे हम किस
1: जी
0: दुनिया में फंस गए, या ये क्या हम सुन रहे हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में,
1: बिल्कुल
0: तो हमारा मन थोड़ा सा उद्विलित हो जाता है।
1: बिल्कुल। और वैसे भी ये जो युग है वो संचार का युग है, और मोबाइल फोन हो या सोशल मीडिया हो, और इससे कोई भी जानकारी जो है वो छुपी नहीं रहती है, और पल भर में कोई भी जानकारी, वो चाहे वो सच हो या झूठ हो, पूरी दुनिया में फैल जाती है। और लेकिन इस आधुनिक सुविधा के साथ में एक बड़ी समस्या ये भी है कि हम जो अफवाहें उससे बच नहीं पाते हैं। हमें जितनी सुविधा मिलती है फोन के जरिए, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच बना सकते हैं, लेकिन वो पहुंच कभी कभी जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली भी बन जाती है, क्योंकि उससे अफवाहें फैलने का डर रहता है, और अफवाहें जब फैलती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं, कुछ कभी कभी दंगे भड़क जाते हैं या उस तरीके की
0: हाँ,
1: चीज़ें होती हैं
0: बिल्कुल
1: जो
0: सही कहा
1: ऐसे
0: आपने
1: हादसे हो जाते हैं।
0: कि बिना सत्यता के जो फैलाई गई झूठी या भ्रामक जो जानकारियां हैं वो केवल न केवल लोगों को भ्रमित करती हैं, बल्कि कई बार हमारे मन में भय, तनाव, हिंसा और अविश्वास का कारण भी बन जाती है। और अफवाहें जो है अक्सर जो है आधी अधूरी जानकारी कहें या झूठे संदेश हैं या संपादित तस्वीरें हैं या पुराने वीडियो या मनगढ़ंत कहानियों के रूप में फैलाई जाती हैं।
1: बिल्कुल। और इस तरह से उनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि वो पहली नज़र में हमें एकदम सच लगती हैं, और लोग बिना जांच पड़ताल किए इन्हें आगे भेज देते हैं, और देखते ही देखते एक झूठ लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। और अफवाहों का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो समाज की एकता और आपसी विश्वास को भी कमज़ोर करती हैं।
0: बिल्कुल, कई बार किसी व्यक्ति की बात करें, समुदाय की या संस्था के बारे में जब गलत जानकारी फैलाकर उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई जाती है तो स्वास्थ्य, प्राकृतिक आपदा, कानून व्यवस्था का या आर्थिक मामलों से जुड़ी अफवाहें लोगों में घबराहट और गलत निर्णयों को जन्म भी दे सकती हैं। आरती,
1: बिल्कुल। और इस डिजिटल युग में देश के हर नागरिक की अपनी खुद की एक जिम्मेदारी है कि वो एक जागरूक और जिम्मेदार इंटरनेट उपयोगकर्ता बने। कोई भी संदेश, वीडियो या समाचार मिलने पर उसे तुरंत आगे भेजने के बजाय उसके स्रोत की विश्वसनीयता को अच्छी तरीके से आप पहले जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसको आप आगे भेजें।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, क्योंकि अगर किसी समाचार की पुष्टि विश्वसनीय समाचार माध्यमों से या संबंधित सरकारी विभागों से नहीं होती है तो उसे आगे नहीं भेजना है। हम क्या करते हैं, तुरंत आगे भेज देते हैं। हमें लगता
1: बिल्कुल
0: है पता नहीं हम क्या भेजकर क्या संदेश दे देंगे या क्या क्रांति बन

0: सी बना देंगे,
1: जी
0: लेकिन सनसनी फैलाने वाले जो शीर्षक हैं, भावनात्मक संदेश हैं, हमें इनसे सावधान रहना चाहिए। और ये बहुत जरूरी है कि आधिकारिक जो वेबसाइट्स हैं और विश्वसनीय समाचार स्रोत हैं, उनसे हम पुष्टि करें कि भाई ये जो न्यूज़ है, ये जो समाचार है, ये जो संदेश हमें भेजा गया है, वो सही है भी या नहीं।
1: बिल्कुल। और क्योंकि ये भ्रामक जो खबरें होती हैं उससे समाज में डर हो फैलता है, अराजकता, और साथ ही कई बार कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाता है कि किस तरह से हम उस जगह को शांति उसको बना के रखें। तो ज़रूरी है कि हम इस तरीके की अफवाहों से बचें और फैलाने का काम ना करें उनको।
0: हाँ, आपको पता है इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत का माहौल पैदा हो जाता है। हम
1: जी
0: इतने सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहते हैं और हमें पसंद भी है कि हम एक अच्छा माहौल अपने आसपास बना के रखें, लेकिन इस तरह की अफवाहों से कई बार नफरत पैदा हो जाती है लोगों के
1: बिल्कुल
0: मनों में। इससे हमें बहुत बचना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी सी सावधानी जो है समाज को बहुत सारी परेशानियों से बचा सकती है।
1: जी
0: इसलिए न तो खुद अफवाहों पर विश्वास करें और न ही इन्हें फैलाने का हम खुद माध्यम बने। और जो भ्रामक खबरें हमें मिलती हैं उससे समाज में डर और अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है। कई बार ऐसी बातें कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा संकट भी खड़ा कर देती हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे जो साथी हैं वो भी बहुत कुछ लिख रहे हैं इसके बारे में। तो हम एक हमारे जो साथी हैं वो लिखते हैं कि सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाले अफवाहें फैलती नहीं है, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जा रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपनी बौद्धिक क्षमता और विवेक का प्रयोग करना चाहिए और उसके अनुसार ही आचरण करना अपेक्षित है, और ऐसी अफवाहों से बचना ही श्रेयकर है।
0: बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि किसी भी खबर या संदेश को आगे भेजने से पहले उनके विश्वसनीय स्रोत की जांच जरूर करें। सकारात्मक दृष्टिकोण अफवाहें अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा कर देती हैं। इनसे दूर रहकर मानसिक शांति बनी रह सकती है। एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से हमें बचना चाहिए। गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानूनन अपराध है, जिसके लिए जेल या जुर्माना हो सकता है।
1: बिल्कुल। एक हमारे साथी हैं जो कहते हैं कि सावधान रहिए और किसी भी संदेश या खबर को आगे भेजने से पहले उसकी पुष्टि जरूर करें। सरकारी वेबसाइट्स या भरोसेमंद समाचार चैनल की जानकारी की सत्यता परखें और बिना सोचे समझे किसी भी बात पर गुस्सा ना करें या डरें नहीं। जिस खबर के सच होने का पक्का सबूत हो और ना हो उसको आगे ना भेजें।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि सावधान रहना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा सावधान रहने लगते हैं तो स्थिति जटिल हो जाती है। ज्यादा सावधानी रखना आपको परेशान भी करता है और आपको चिंता भी देता है। लेकिन हाँ, अफवाहों से रहें सावधान। भाई, सत्य के विपरीत असत्य में गिने जाने वाली अफवाहें फैलती नहीं, अपितु ऐसा लगता है कि वो फैलाई जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में किसी भी अफवाह के मूल तक पहुंचने की जरूरत पड़ती है और उनके स्वरूप के तह तक जानने के लिए हर एक को अपने बौद्धिक क्षमता के विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुंचाई हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी जो कहते हैं कि अपने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं और जो अफवाहें हैं वो अक्सर समाज में अशांति और तनाव पैदा करती हैं, और एक जागरूक नागरिक के रूप में बिना सोचे समझे किसी भी वीडियो, फोटो या टेक्स्ट को शेयर करने से बचना चाहिए, और गलत और भ्रामक जानकारी फैलाना कानून अपराध है जिसके लिए जेल भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो हमारे श्रोताओं ने अपनी राय हम तक पहुंचाई और वाकई अफवाहें फैलाना बहुत ही बड़ा एक अपराध है जो समाज में गलत माहौल पैदा कर देता है।
1: जी
0: चलिए, हम तो गीत संगीत के जरिए एक अच्छा माहौल पैदा करते हैं इस
1: हाँ
0: कार्यक्रम
1: बिल्कुल,
0: में।
1: गीत सुनते हैं।

0: लगता है आरती आज तुम पूरी तरह से सावन में भिगोने वाली हो, सावन की जो बरसात है वो स्टूडियो में भी होने लग रही है ना
1: जी। और अब हम बात करते हैं अपने अगले विषय की, जो है सखी विशेष, जिसके अंतर्गत हम किसी एक महिला की बात करते हैं जिन्होंने अपने बलबूते पे अपनी एक पहचान बनाई है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मल्लिका सदानी जी की।
0: तो एक बात मैं कहना चाहती हूँ, हम किसी एक महिला की बात तो जरूर करते हैं लेकिन इस एक महिला के बहाने हम उन हजारों महिलाओं को सैल्यूट भी कर लेते हैं जो इस तरह से अपने आप को हिम्मत के साथ आगे बढ़ा रही हैं।
1: बिल्कुल। और आज हम एक ऐसी ही महिला के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने बेटी को स्किन की बीमारी से बचाने के लिए, यानी अपनी अपनी बेटी को त्वचा की बीमारी से बचाने के लिए एक कंपनी की शुरुआत की और आज वो कंपनी करोड़ों की बन गई है। इन्होंने ये बात सच कर दिखाई है कि जब बच्चों के ऊपर कुछ परेशानी आती है तो माँ बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी लड़कर रास्ता निकाल लेती है।
0: क्या बात है, बहुत खूब बात कही आपने। और माँ तो हर तकलीफ की दवा है, माँ से बड़ा कौन हो सकता है। और जब हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास परिवार में जन्मी मल्लिका सदानी की, एक सैन्य परिवार में थी वो पली बड़ी। मल्लिका का जो जीवन था आरती अनुशासन से बंधा हुआ था और उनके पिता जो एक मेजर जनरल थे उन्होंने उनमें एकाग्रता और दीर्घकालिक लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति का संचार किया और गृहिणी माँ ने शिक्षा को सर्वोपरि माना भी
1: जी। और उन्होंने राजस्थान के कोटा से 12वीं की और उसके बाद फिर पुणे के कॉलेज से इंजीनियरिंग पूरी की। इसके बाद वो एमबीए करने मुंबई चली गई और एमबीए करने के बाद एक जाने माने बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर उनकी नौकरी लग गई। उसके बाद 2008 में उनकी शादी मोहित सदानी से हुई और शादी के बाद वो पति के साथ लंदन शिफ्ट हो गई।
0: हाँ, लेकिन जब उनकी बेटी एक साल की थी तब साल 2012 में वो इंडिया वापस भी आ गई। भारत पहुंचकर उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी बेटी को अति संवेदनशील त्वचा होने की वजह से समस्याएं होने लगी हैं और इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने अपनी बेटी के लिए लंदन से ही उत्पाद मंगवाए लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था
1: जी। और क्योंकि लंदन से आने वाले को ढूंढना, दोस्तों और रिश्तेदारों की मदद लेना एक बड़ी चुनौती से कम नहीं था। जब उनकी बेटी जो थी, उसका छोटी बेटी का जन्म हुआ तब उसे सांस की बीमारी होने के कारण कई उत्पादों का वो इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी।
0: हाँ।
1: और अपनी बेटी के लिए उन्होंने कई सारे उत्पादों को परख कर देखा जिनमें खुशबू ना आती हो, जिनकी खुशबू उनकी बेटी को के उनकी बीमारी को और ना बढ़ाए।
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा। हाँ हाँ
1: जी।
0: और हालांकि उन्हें ऐसे उत्पाद नहीं मिले लेकिन उन्होंने खुद नए उत्पाद बनाने का निर्णय ले लिया ऐसी स्थिति में, और ऐसे उत्पाद जिनमें हानिकारक रसायन नहीं हो और जो बच्चों के लिए एकदम सुरक्षित हो। इसके लिए उन्होंने लगातार शोध करना शुरू किया, साथ ही इस शोध कार्य के लिए वो दुनिया भर के कई वैज्ञानिकों से भी मिली।
1: बिल्कुल। और लगातार शोध और वैज्ञानिकों के सुझाव को प्राप्त करने में उन्हें 2 साल का समय लग गया और साल 2016 में उन्होंने अपने पति के साथ स्किन केयर ब्रांड की शुरुआत की जिसका नाम उन्होंने रखा था अमीशी कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, लेकिन 2017 में इसका नाम बदलकर द मॉम्स कंपनी कर दिया गया। और उनकी कंपनी के द्वारा बच्चों की स्किन को ध्यान में रखकर ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं जिनमें हानिकारक रसायन ना हो,
0: जो पूरी तरह से प्राकृतिक हो ना।
1: जी बिल्कुल। और ताकि बच्चों की जो स्किन है, जो उनकी त्वचा है, जो बहुत ज्यादा एकदम मासूम त्वचा होती है, वो प्रभावित ना हो। मल्लिका सदानी को उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए अनेक सम्मान मिले जिनमें प्रमुख हैं टाइम्स शी अनलिमिटेड एंटरप्रेन्योर अवार्ड, बिजनेस वर्ल्ड 40 अंडर 40 वुमेन एंटरप्रेन्योर और साथ ही मॉम्स कंपनी को फोर्ब्स इंडिया बेस्ट D2C ब्रांड सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए।
0: क्या बात है। और महिला मल्लिका सदानी का जो बैंकर से एक सफल उद्यमी का सफर था वो आसान नहीं था आरती, इतना मुश्किल काम था और पहले से जो ब्रांड्स थे उनके बीच अपनी पहचान बनाने जैसी कई चुनौतियों का उन्होंने सामना किया लेकिन इन सबके बाद सफल महिला उद्यमी का खिताब उनके नाम हुआ और आज उनका नाम देश की सफल महिलाओं में लिया जाता है और आज वो महिलाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।
1: बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए जो उन्होंने शुरुआत करी थी आज वो बहुत ज्यादा फल फूल रही है।
0: सोचिए कितने बच्चों को इससे लाभ हुआ है ना, कितनी माताएं अपने बच्चों को उस बीमारी से बचा पाएंगी जिस बीमारी से इन्होंने अपनी बेटी के लिए इतना बड़ा शोध किया और इतनी बड़ी सफल उद्यमी बन गई। चलिए गीत सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल।
2: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
3: 4 औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं
2: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की
3: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10 में रेड कार्पेट।
2: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 4 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: तो आरती तुम चौंक गई ना
1: क्योंकि गीत गीत गीत गीत आप एकदम से आपने मुझे चौंका दिया।
0: हाँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण संदेश था जिसे हमें बजाना बहुत जरूरी था, और हमने सोचा पहले इसे बजा लेते हैं और अब सुनते हैं गीत।
1: जी

0: तो इस अंतराल के बाद हमारी सभी सखियों और सखाओं का एक बार फिर से स्वागत है।
1: जी, और अब हम बात करें थोड़ी बचपन की।
0: अरे, बचपन की बातें तो हम हमेशा ही करते हैं।
1: वो बचपन का जमाना जब हम शरारतें किया करते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने। और आज तो आपने एक इतना खास विषय हमारे श्रोताओं के लिए चुना है कि हल्की फुल्की बातें भी हो जाएंगी और बचपन की यादें भी ताजा हो जाएंगी, है ना।
1: और हमारे साथी भी तो कितने अपने बचपन की जो किस्से हैं वो हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं, साझा करें उन्होंने बहुत
0: तो
1: सारे।
0: आपने उनसे अनुरोध किया था ना कि भाई आप इस पर निबंध नहीं लिखेंगे बल्कि ये बताएंगे कि बचपन में हम क्या शरारतें किया करते थे या हमारे बच्चों ने क्या क्या शरारतें की। तो उन्होंने लिखकर आपको दिया है, पढ़ते हैं हम क्या हमारे श्रोता चाहते हैं, आज क्या लिखे हैं उन्होंने हमारे लिए।
1: तो एक हमारे श्रोता है जो कहते हैं कि बचपन की यादगार शरारत। भाई, बचपन तो हर गम से बेगाना होता है और हम उस बेगानेपन में स्वयं को देख भी कहाँ पाते हैं। और वैसे भी कोई भी अभिनेता या और अपने अभिनय को अभिनय करते समय देख भी पाता है भला। अरे, उस काल में ही नहीं अपितु हर काल में अभिनेता के अभिनय को दूसरे ही देखते हैं। इस दृष्टिकोण से हम लोग जब अपने बाल बच्चों के अभिनय को देखते हैं तो उसमें स्वयं को ढूंढते हैं। ये तो सही कह रहे हैं वो।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि अब आप सबको अपने बचपन की दिलचस्प और मजेदार यादगार किस्सा बताता हूँ। हुआ यूं कि मैं स्कूल जाने से बहुत कतराता था। बड़ी मुश्किल से माँ हाथ पकड़कर स्कूल छोड़ भी आती तो स्कूल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। जल्दी से घंटी बजे और छुट्टी हो, बस इस बात का इंतजार रहता था। एक दिन तो हद ही हो गई, समय जैसे ठहर ही गया, घंटी बजे ना छुट्टी हो। तो मेरे मन में एक विचार आया कि मैं छुट्टी होने से पहले ही बस्ता लेकर चुपके चुपके कक्षा से बाहर निकलता हूँ और स्कूल की घंटी और लकड़ी की हथौड़ी जो जमीन पर पड़ी थी उठाई और अपने स्कूल के बैग में रख के घर ले आया और अपने घर पहुंचकर घंटी निकालकर बजाने लगा। मेरी माँ ने ये सब देखा तो हैरान होकर पूछा, ये सब क्या है, ये स्कूल की घंटी घर क्यों ले आए। मैंने बताया कि स्कूल की घंटी मतलब छुट्टी हो ही नहीं रही थी, स्कूल वाले इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, ये बेकार जमीन पर पड़ी थी तो मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया हूँ। ये सुनते ही माँ ने घंटी की तरह मुझे भी बजाना शुरू कर दिया और घंटी को वापस स्कूल छोड़कर माँ मेरे द्वारा की गई शरारत के लिए अध्यापकों से क्षमा मांगकर घर को लौट आई।
1: भाई, बहुत बढ़िया शरारत है तो। और हमारे एक साथी हैं जो लिखते हैं कि बचपन में तो हमने काफी शरारतें की हैं, किस किस के बारे में बताऊं। पर एक बार की बात है, मेरी मम्मी हम बच्चों को दादाजी के पास छोड़कर दादी माँ और बुआ के साथ मूवी देखने चली गई। और हम लोगों को बचपन से ही फिल्म देखने का बहुत क्रेज रहा है। बस क्या था, हम लोग दादाजी को परेशान करना हमने शुरू कर दिया। और तो और, मैंने अपनी बुआ का एक दुपट्टा लिया और अपने गले में बांध कर दादाजी को डराने लगी कि अगर मुझे फिल्म नहीं ले जाएंगे तो मैं उससे अपने आप को बांध लूंगी। हालांकि दुपट्टा बहुत ढीला था, ढीला ही बांधता, पर दादाजी तो डर गए। फिर उन्होंने प्रॉमिस किया कि कल मैं तुम लोगों को फिल्म दिखाने लेकर जाऊंगा। फिर जब मम्मी आई तो मेरे दादाजी बोले, लो संभालो अपने बदमाश बच्चों को। लेकिन दूसरे दिन दादाजी हम लोगों को फिल्म दिखाने ले गए।
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि साल 1962 के आसपास की बात है, हमारा सुथारी का काम वर्कशॉप

0: शरारत की शिकायत पिताजी तक पहुंच गई।
1: अच्छा
0: उन्होंने हमसे भी बच्चों को साथ बुलाकर कड़ी डांट के साथ जो धुलाई की वो आज भी याद है। भाई पहले तो माता पिता
1: जी
0: धुलाई कर दिया
1: बिल्कुल
0: करते
1: आराम
0: थे
1: से
0: और बच्चे भी
1: जी
0: खा लिया करते थे। हमने भी बहुत
1: बहुत बहुत
0: ये
1: मार खाई है
0: धुलाई हुई है हमारी भी,
1: जी
0: लेकिन मुझे याद है कि थोड़े समय बाद हम फिर से बच्चे बन जाते थे, कभी भी नाराज नहीं हुए, ना हमें माता पिता पर कभी गुस्सा आया।
1: बिल्कुल। अब एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि बचपन की यादगार शरारत मैं भी बता ही देता हूँ। बचपन में मैं और मेरे घर के पास एक चाचा हम उम्र हुआ करते थे। मैंने अपने छोटे भाई के साथ प्लान बनाया कि आज रात में जब चाचा सो जाएंगे तो उनकी चारपाई के पास भूत बनकर जाएंगे और उनको डराएंगे। गर्मी के दिनों में हम अक्सर घर के बाहर चारपाई डालकर सोया करते थे। रात को मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि मैं अपने चेहरे पर लाइट जलाकर आऊंगा, तुम उनकी चारपाई हिला देना, नीचे से लगेगा कि कैसे कि कोई भूत आ गया। लेकिन जैसे ही मैं दूर से सिर्फ अपने चेहरे पर लाइट जलाकर चाचा की चारपाई के पास जाने लगा तो मेरे छोटे भाई ने कोई हरकत नहीं की, वो चुपचाप बैठा रहा। मैं जब पास पहुंचा तो उससे पूछा कि तुमने चारपाई को हिलाया क्यों नहीं, तो छोटे भाई ने कहा कि आपको देखकर मैं खुद ही बहुत डर गया था, लगा कि सच में सामने भूत आ गया है। उस समय उसका डरा और सहमा हुआ चेहरा देखने लायक था। उस समय मुझे बहुत तेज हंसी आ गई और सच में बचपन की घटना मुझे अभी तक याद है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसा होता है, कई बार
1: जी
0: हम कोई ऐसा स्वांग रच लेते हैं लेकिन हमारे छोटे भाई बहन जो होते हैं
1: डर
0: वो डर जाते
1: जाते
0: हैं
1: हैं
0: ना।
1: जी
0: हाँ एक लिखते हैं हमारे श्रोता की हल्की फुल्की बातें, बचपन की यादगार बात ये है कि मैंने एक शर्त की थी बचपन में जो बाद में मुझे और मेरे माता पिता दोनों को ही तकलीफ दे गई। एक जो मेरी गलती नहीं थी, एक जिसमें मेरी गलती थी, तो मैं आपको वो बताती हूँ जिसमें मेरी गलती ये थी जिसमें मेरी गलती नहीं थी, वही दोनों बातें बता रही है।
1: अच्छा
0: उसमें ये हुआ कि मेरे पेट में अचानक से सीटी बजते बजते सीटी घुसे पेट के अंदर, लेकिन मतलब इस तरह का कोई उनको दर्द हुआ होगा, लेकिन भगवान की कृपा थी कि मैं बच गई। और एक जिसमें मेरी गलती थी कि मेरे ड्रेस में कुछ मोती लगे हुए थे, तो एक दिन हमें कहीं जाना था, ड्रेस पहनी हुई थी, मम्मी तैयार हो रही थी, और मैंने क्या किया कि ड्रेस की मोती को निकालकर नाक में घुसा लिया और
1: ओहो
0: उसके कारण कई प्रकार के मतलब दिक्कत हो गई। नाक के अंदर जाकर वो फंस गया, मोती अटक गया कहीं, और नाक के द्वारा हमें पता चला कि सब कुछ ठीक तो है, लेकिन उस समय मेरे माता पिता बहुत डर गए और आज भी मुझे ये बात याद आती है। बच्चे इस तरह का करते थे, पहले पेंसिल घुसा लेते थे, बर्तन नाक के अंदर डाल लेते थे
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: सिक्का भी कई बार गिटक जाते थे बच्चे,
1: अरे
0: 1 रुपए
1: बहुत
0: का, 50 पैसे का सिक्का या चवन्नी जिसे हम 25 पैसे कहते थे ना, कई बच्चे बच्चे निगल गए। ऐसी स्थितियां भी
1: जी
0: कई
1: बिल्कुल
0: बार स्कूल्स में टीचर्स को फेस करनी पड़ती है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: ये कभी कभी शरारतें बहुत भारी पड़ जाती हैं
0: हाँ शरारतें
1: जी
0: भी और कई बार नासमझी में भी बच्चा कर देता है
1: जी
0: और उसका भुगतान माता पिता को करना पड़ता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि बचपन की वो बात याद आती है जब हम किसी के बागान और अहाते में फूल फल तोड़ लेते थे। सरकारी जो क्वार्टर होते थे उसमें बहुत सारे बगीचे में फूल लगे होते थे। हम लोग किसी के घर जन्मदिन में गए, सब लोग भीतर में कुछ तैयारी चल कर रहे थे और हम लोगों ने भर भर के फूल तोड़ लिए। अब उन फूलों को कैसे लेकर जाएं, उसे हम लोगों ने क्यारी में ही छुपा दिया। चलने के समय जब हमारे जो गार्जियन जो साथ में थे तो हम उसको नहीं ले पाए। दूसरे दिन बाबूजी जब शाम के टाइम में ऑफिस से लौटे तो उन्होंने शिकायत की, बच्चों ने फलाने जी के यहाँ से बहुत फूल और फल तोड़ के बर्बाद किए हैं। मार तो नहीं पड़ी बट डांट बहुत पड़ी और बाबूजी ने कहा कि तुम लोग कहीं भी ले जाने लायक नहीं हो। उसके बाद से हम कहीं जाते भी कोई जान पहचान फंक्शन में तो एक या दो भाई बहन ही जाते थे, मतलब सब लोग नहीं जाते थे क्योंकि सारे भाई बहन जब इकट्ठा हो जाते हैं ना तो शरारतें शुरू हो जाती
0: शरारते तांडव हो जाता है एक तरह से सभी बच्चों का। तो और माता पिता वाकई कहते थे कि भी नाक कटा दी तुमने ना
1: बिल्कुल यही
0: हमारे
1: करते हैं ना कि फिर सबको मत लेके जाओ, एक आध सिर्फ एक
0: लेके
1: जाओ
0: जाओ और उस घर में जो पीछे वाले बच्चे रोआ करते थे ना, वो भी दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है
1: कि
0: आरती।
1: हमें नहीं लेके जाया जा
0: हाँ
1: रहा
0: हमें
1: है
0: नहीं लेके गए हैं। और कई बच्चे तो देखा सड़क पर ही लेट जाते थे जिद के कारण, ऐसे बच्चे भी देखे हैं जहाँ माता पिता बड़े शर्मिंदा होते थे कि भी बच्चे
1: जी
0: क्या क्या हरकत कर लेते हैं, लेकिन ये बचपन है।
1: बिल्कुल
0: और वही एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी बुआ का घर मेरे घर के ही पास था, उनका बेटा मेरे बराबर ही था, हमारे माता पिता ने हम दोनों को एक ही स्कूल में नाम लिखा दिया। हम दोनों का ही पढ़ने में मन नहीं लगता था, क्लास की खिड़की बड़ी और सीधी थोड़ा नीची थी, जब टीचर पढ़ा रही होती थी ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके तब हम दोनों उस खिड़की से बाहर निकल जाते थे, फिर इधर उधर घूमते थे, पकड़े जाने पर डांट खाते थे। वैसे भी हम दोनों अक्सर ऐसे ही बाहर बिना बताए निकलकर घूमा करते और फिर बहुत डांट खाया करते थे। लेकिन अब आपको लगता होगा ना कि
1: जी
0: वो शरारत आपको महंगी भी पड़ गई होगी, आपने पढ़ाई में ध्यान
1: कभी
0: नहीं
1: कभी
0: दिया,
1: डांट भी पड़ी होगी, कभी
0: हाँ
1: कभी मार भी
0: मार भी
1: पड़ी
0: पड़ी
1: होगी
0: होगी।
1: जी। अच्छा
0: हाँ
1: मंदाकिनी जी, हम लोगों ने बचपन की बातें बहुत की, एक गीत सुने
0: चलिए सुन लेते हैं।

0: एक आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी मानी क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय।
3: तो हमारे और श्रोता क्या लिख रहे हैं आरती?
4: बहुत कुछ लिख रहे हैं। एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि एक पड़ोसी दादाजी के जी घर के बाहर ठेला गाड़ी पर रात को सोते थे। देर रात हम मोहल्ले के बच्चे जो होते थे उनका ठेला गाड़ी धकेल कर दूर छोड़कर आ जाते थे और सुबह नींद खुलती थी तो दादाजी ठेला गाड़ी वापस धकेल कर घर पर लाते और हमें बहुत ज्यादा बोलते थे।
3: बच्चे मन के सच्चे है ना, यूं ही नहीं कहा गया। बच्चे इतनी शरारत करने के बाद, जब भी कल परसों एक छोटी सी बच्ची से मिली, वो थोड़ी देर पहले तो बहुत रोती भी आई और जस्ट 5 मिनट बाद वो उतनी ही तेजी से हंसती भी आई। तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि देखिए बच्चे वाकई अद्भुत होते हैं। और तभी कहा गया है कि बच्चे मन के सच्चे, उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं पल पहले क्या कर रही थी 2 मिनट पहले और अब मैं किस रूप में आई हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि मुझे आज भी याद है, मम्मी जब भी बाहर जाती थी कहीं तो हमें जाने को बोलती थी लेकिन हम सभी भाई बहन उनके साथ नहीं जाते थे। ऐसा इसलिए कि हम अकेले घर पर रहकर सभी अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ घर घर खेलते थे। लेकिन एक दिन खेल खेल में हमारे पड़ोस के एक बच्चे को मेरे बड़े भैया से आंख में कैंची लग गई। माँ तो घर में थी नहीं, अड़ोस पड़ोस के सभी लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। समय रहते इलाज हुआ और आंख बच गई। माँ घर आई और सुना हम सभी भाई बहनों की समूह में कुटाई हुई, लेकिन जब पापा आए तो मेरा भाई जिसकी कैंची लगी थी उसकी एक्स्ट्रा कुटाई हुई। ये बात भी सही है। आज जब ये बातें याद आती है तो उस बच्चे को कैंची लगने वाली बात से दिल धक से रह जाता है।
4: जी बस, बहुत ही ज्यादा कभी कभी खतरनाक हो जाती है।
3: हाँ, ये बात तो आरती हमारे साथ भी होती थी कि जब हम खेलते थे और गिर के आते थे तो हमारी माँ 2 थप्पड़ और लगाती थी, कितना मना किया था तुम्हें फिर भी तुम कहना नहीं मानते।
4: बिल्कुल।
3: तो ये सब चीजें बचपन की हैं। और क्या लिखते हैं श्रोता?
4: एक हमारे साथी जो लिखते हैं कि दर्जा 2 या 3 में पढ़ रहा था, गाँव के खेतों की पगडंडियों से स्कूल का रास्ता था और बड़े भाई साहब के साथ स्कूल जाते थे। माँ ने बताया कि एक बार स्कूल से घर आया तो मेरे दाहिने पैर का नाखून उखड़ा हुआ था और बहते खून को देखकर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो तब मैंने अपने तोतले अंदाज में कहा भैया कहे दौड़ तो दौड़ा और गिर गया।
3: बिल्कुल, बचपन में तो गिरना और उठना यही है। और एक श्रोता लिखते हैं, उन्होंने लिखा है कि बचपन के दिन भी क्या दिन थे, न कोई फिक्र थी ना जिम्मेदारी थी, बस हर वक्त कोई न कोई नई शरारत सूझती रहती थी। आज बचपन की उन्हीं खट्टी मीठी यादों की गलियों में फिर से घूम आते हैं। घंटी बजाओ और भाग जाओ, डिंग डोंग डिच, ये हम सबका सबसे पसंदीदा खेल हुआ करता था। दोपहर के समय जब पूरा मोहल्ला सो रहा होता था तब दबे पांव किसी के घर जाना, जोर से घंटी बजा देना और फिर सांस रोककर ऐसे भागना जैसे पीछे पुलिस पड़ी हो। छुपकर मकान मालिक का गुस्सा देखना अलग ही रोमांच देता था और नकली भूत का डर जो था डराना, कंबल या सफेद चादर उड़कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी, क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौके जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग

कर छोटे भाई बहनों को डराना, दोस्तों को डराना, कभी कभी खुद ही उस माहौल से डरकर मम्मी के पीछे छुप जाना और स्कूल में चौक और डस्टर की चोरी क्लास खत्म होते ही ब्लैक बोर्ड साफ करने वाला डस्टर छुपा देना या रंग बिरंग चौके जो है जेब में भर लेना, तो लगता है जैसे बहुत बड़ा जो है खजाना हमारे हाथ में लग

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे
1: श्रोताओं, अभी आप आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजे हैं। हमारी पहली सभा समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहते हैं। 6 बजे दूसरी सभा में हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार।

नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। इस समय शाम के 6:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम शाम की ये दूसरी सभा प्रारंभ करते हैं। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले आपको हमारे आज के दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता देते हैं। अब से कुछ ही समय बाद आप सुन पाएंगे स्थानीय भाषाओं का कार्यक्रम। इसमें पहले सुनेंगे मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ मार भक्ति गीत कल्चर विटलिंग मार और साथियों की आवाज़ में। हाइद्वाइंग क्वामे और साथी सुनवाएंगे कुछ जेमे भक्ति गीत जेमे कार्यक्रम में 6:25 पर। आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हंधियार आंचलिक बतौरी रिले किए जाएंगे 6:45 पर। शाम 7:00 डिमासा कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ डिमासा लोकगीत संपर बोडो के आवाज़ में। सिकारी रोंगफार सुनवाएंगे कुछ कार्बी लोकगीत कार्बी कार्यक्रम के तहत, समय रहेगा 7:20 पर। और 7:40 पर कुकी कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ कुकी आधुनिक गीत नेंगनी चोंग चंगलोई और साथियों के आवाज़ में। कृषि संबंधी जानकारियों का कार्यक्रम किसानवाणी रात 8:00।

8:30 पर आप आनंद ले सकते हैं कुछ फिल्मी गीतों का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या में समाचार रिले किए जाएंगे 8:45 पर, और रात 9 बजे होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत, जो आप हम तक SMS और WhatsApp द्वारा पहुंचाते हैं। उसके पश्चात आप सुन पाएंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, यह था हमारे आज की दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है, तो चलिए अब हम चलते हैं और सुनते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम। इसमें पहले लेकर आए हैं मार कार्यक्रम, जिसके तहत आज हम आपको सुनवाएंगे कुछ मार आधुनिक गीत कल्चर विथ लिंग मार और साथियों की आवाज़ में।

श्रुतम, अभी आप मार कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ मार भक्ति गीत, कल्चुइटलिंग मार और साथियों की आवाज़ में, आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है। तो चलिए अब सुनते हैं जेमे कार्यक्रम के तहत कुछ जेमे भक्ति गीत, हाइदुआइंग क्वामे और साथियों की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप जिमे कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ जिमे भक्ति गीत हिद्वाइन क्वामे और साथियों की आवाज में। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से हंदियार आंचलिक बातरी रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

फ्रीक्वेंसी मॉड्युलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आपको सुनवाते हैं डिमासा कार्यक्रम। इसमें आज हम लेकर आए हैं संपर बोडो की आवाज में कुछ डिमासा लोकगीत।

Ay, por yo.

空白通话你参加嘞，只空白通话你参加嘞，还个造火的心里，也个破破的心里，不睡了呀。

哎哈，空巴耶提瓦尼三伽勒，兹伽耶提瓦尼三伽勒，阿扎朗波林巴拉耶，那辛波贡嘎拉耶，达波达扎里。哎吉尼尼巴布萨伊哈。

Mazarengo azangong da sagong shini eklai he. Hey, Mazarengo.

在买新单都不在把阿妈扎人我上不安大哭的呀巴掌那么用来说来个好还买

0: श्रोताओं, अभी आप डिमासा कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ डिमासा लोकगीत श्यामपाल बोडो की आवाज में। आकाशवाणी का यह हफलंग केंद्र है, तो चलिए अब सुनते हैं कार्बी कार्यक्रम के तहत कुछ कार्बी लोकगीत सिकारी रंगफार की आवाज में।
1: एरुकासन लोरी एरुपेन एरी।

अमे ऐदं शरणं पाले नंहा

มันเป็นอยู่ทอกวามเกเกตวาสีรูทอกวามระอีดำตั้งลู

अभी आप कुकी कार्यक्रम के तहत सुन रहे थे कुछ कुकी आधुनिक गीत नेंग नई चोंग चोंगलोई और साथियों के आवाज में। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। तो चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं कृषि संबंधी जानकारियों का कार्यक्रम किसान वाणी।

श्रोताओं, अभी आप कृषि संबंधी जानकारियों का कार्यक्रम किसान बानी सुन रहे थे। आकाशवाणी का यह हाफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुछ फिल्मी गीत। पहला गीत सुनिए अभिजीत के आवाज में। फिल्म का नाम है शोला और शबनम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कुछ हिंदी फिल्मी गीत। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 110.2 मेगाहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित

0: कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्स्टेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
2: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
3: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
4: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
5: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और ये लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। हुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले दो से तीन दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी का ये हाफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपके गीत, जो हम तक SMS और व्हाट्सएप द्वारा भेजते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं नाजायज फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है कुमार शानू और रूप कुमार राठौड़ ने। गीत लिखा है सुदर्शन फाकीर ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश किया है कालाचांद दिमाहासाव से रमूश हासनू, पायरिंग होजाई और उनके बहुत सारे दोस्त और उनके परिवार वाले चांदपुर नगर से। तो लीजिए दोस्तों, प्रस्तुत है आपका मनपसंद ये गीत।

पटेल नगर मलौद पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू, आप सभी सुनना चाहते हैं मिलन फिल्म का ये गीत जिसे गाए हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

करे शोर। अरे बाबा, शोर नहीं, शोर, शोर, शोर।